नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज के सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर, जिसे आप सुन पाएंगे अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात

0: इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज वागड़नी खेती नी विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नो आधार है। अणा विषय माते घणा कानी अमारी आप तक की बात रहेगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। भाई बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: भाइन बोनो गीत तो आयशो पुरुन और गीत बात एको गीत फिरी आप सबनो घने मान स्वागत कर हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाइन बोनो गीत के पहले आपने विषय बताड़ू तू के आज आपने बातचीत करवा वा रहा हूँ पारंपरिक बीज वागणनी खेती नी विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नो आधार है। अणा विषय माते जानकारी अलवा बल्ले आज आपने कार्यक्रम तक जुड़ी रही मनीष जी तो सप्ते की पहले अपने हमरी लड़नी वाते मोरे कर अपनी वाते। सर नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पारंपरिक बीज प्रबंधन को लेकर। हम देखते हैं कि बीज का प्रबंधन करना वागड़ जो क्षेत्र है उसकी खेती की विरासत है, आत्मनिर्भरता है और बेहतर उत्पादन का आधार है। तो सबसे पहले आप हम यही बताइए कि आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक बीजों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है।
1: तो किसान भाइयों, अगर हम हमारे पारंपरिक बीज की बात करें तो वागड़ अंचल का हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ खेती की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति आधारित जीवन शैली का जो केंद्र है उसको हम खेती और इससे जुड़ी हुई चीजें मानते हैं। तो यहाँ के किसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभव, परंपरागत ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खेती की ऐसी प्रणालियां विकसित की जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है।
0: बिल्कुल।
1: इन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे हम खेती की आत्मा कह सकते हैं वो है हमारा पारंपरिक बीज। क्योंकि बीज खेती के लिए एक आदान या वस्तु नहीं है बल्कि ये हमारे किसान साथियों के लिए उनकी स्वतंत्रता, उनकी खाद्य सुरक्षा, उनकी संस्कृति और खेती के ज्ञान का प्रतीक है।
0: बिल्कुल।
1: तो किसान भाइयों, हम कह सकते हैं कि जिस किसान के पास अपना बीज होता है वो खेती के लिए बाजार पर बहुत कम निर्भर रहता है।
0: जी जी सर।
1: इसी के उल्टे यदि हम बात करें तो किसान हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार की तरफ देखते हैं। कई बार बीज के मिलने में जो देरी होती है उससे उनकी फसल प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और बीज के साथ कई सारे बाहरी संसाधनों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है।
0: जी जी।
1: तो आज अगर खेती की लागत बढ़ रही है इसमें उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई, इनके खर्च जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समय में अपने खेत का शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज यदि वो तैयार करें तो इससे कई तरह से हमारी खेती में लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।
0: बिल्कुल सर।
1: और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसान के पास खुद का अपना बीज होता है तो उसकी बाजार की निर्भरता कम हो जाती है, और अगर उसके पास अपना बीज नहीं होता है तो किस तरीके से खर्च बढ़ता है और उसके सामने चुनौती आ जाती है। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ क्षेत्र के किसान किस तरीके से बीजों का प्रबंधन करते हैं।
1: तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि कहा भी जाता है जैसा बीज वैसी फसल, तो खेती की सफलता का पहला आधार अच्छा बीज।
0: बिल्कुल।
1: यदि बीज स्वस्थ है, शुद्ध है और इसी के साथ वो मजबूत है तो फसल भी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए किसान पूरे वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद लेकर खेती करते हैं और हमारे वागड़ क्षेत्र की जो मुख्य खेती है वो वर्षा आधारित खेती है, यानी कि वो बारिश के पानी पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी स्थिति में यदि बीज कमजोर या खराब हुआ तो हमारा खर्च, हमारी मेहनत दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो किसान साथियों, यदि बीज प्रबंधन की बात करें यानी कि बीज की व्यवस्था की बात करें
0: जी जी,
1: तो वागड़ की जो पारंपरिक बीज की संस्कृति है इसमें ज्यादातर जो फसल के लिए लगने वाला बीज होता है वो किसान पहले से अपने घरों में रखते हैं। तो बागड़ के गांव में बीज संरक्षण कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये एक सामुदायिक संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार या तो हमारे पास बीज कम है या किसी तरह का बीज यदि हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान एक दूसरे के साथ बीजों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं, जिसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं देना होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो गांव के दूसरे किसान उनको बीज उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार बीज सामाजिक सहयोग और सामुदायिक सुरक्षा का माध्यम भी है।
0: बिल्कुल।
1: बीज के चयन का कार्य बहुत महत्व रखता है। कटाई के समय खेत की जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको किसान चिन्हित करते हैं। इसमें जो बड़े दाने वाले, जैसे हम मक्का की बात करें तो बड़े भुट्टे या अन्य दाल वर्गीय फसलों की बात करें तो उड़द, मूंग, तुअर, इनमें जो सबसे बड़े दाने होते हैं और ज्यादा फली वाला जो पौधा होता है उनका चयन किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इस प्रकार के पौधों से प्राप्त दाने जो हम बीज के लिए रखते हैं और अगली बुवाई में उनका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बीज चयन में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम भूमिका की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
0: जी जी।
1: वे बीजों की कटाई छटाई करने से लेकर सफाई, सुखाने, संरक्षण और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण काम को पूरे साल संभालती हैं। परिवारों में बीज संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के पास होती है।
0: जी जी।
1: ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बीज का ज्ञान के जीवंत भंडार के रूप में माना जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारे वागड़ क्षेत्र के किसान भाई बहन जो हैं, वो पारंपरिक बीज का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है, तो सर अब यही मैं जानना चाहूंगी कि बीज के चयन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो किसान साथियों, अगर हम बीज के चयन की बात करें तो खेत से ही शुरू होता है हमारे बीजों का उत्पादन। अक्सर किसान ये मानते हैं कि बीज उत्पादन फसल कटाई के समय शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया बीज की बुआई से ही शुरू हो जाती है। यदि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना है तो पूरे मौसम के दौरान उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
0: जी हाँ।
1: तो फसल के बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना, पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है, तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
1: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई जिस पौधे से भी बीज रखते हैं वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
0: जी जी।
1: जिसपे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
0: बिल्कुल।
1: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण, और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
1: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं।
0: जी।
1: तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबा कर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी, ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
0: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: બહેન બુનો જેમ કે આપણે આપણે વાસુ મનીષજી જોડ્યા હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકાથી બતાડ્યું હે કે આપણે જે વાગડ ક્ષેત્રના કિસાન ભાઈ બોન હે એ પારંપરિક બીજોનું પ્રબંધન હરતે કરી કઈ કઈ વાતોનું એણાને ધ્યાન રાખવું હે, એની સાથે આપણી જે બોને હે એણાની બીજ ચયન મેં હું ભૂમિકા હે ને બીજની સફાઈ ને ગ્રેડિંગનું હું મહત્વ હે। આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર કિટને મોરે પડો સૂટા।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों के सही सेहत के लिए माता पिता को बच्चों को कौन सी ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो सिखानी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि कशिश हम देखते हैं कि प्रत्येक माता पिता खुद के स्वास्थ्य से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: बच्चों का स्वास्थ्य ठीक न हो तो बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का जो अनुपात है वो बिगड़ने लगता है। हम देखते हैं कि माता पिता परेशान हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारा बच्चा जो है वो स्वस्थ क्यों नहीं है। तो ऐसे में आज कार्यक्रम में हम यही जानने वाले हैं कि क्या ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो बच्चों को जरूर अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो सही रह पाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त भी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनवाकर हम उन्हें पहले मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो कहना आज भी उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को गीत सुनवाए हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमें उनकी आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे कि अंजलि जी, अगर सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में क्या बदलाव करने हैं, यानी कि क्या सुझाव है जो हमारे माता पिता अपना सकते हैं। जैसे कि साथियों, आपको सबसे पहले दोपहर के भोजन को ध्यान में रखना होगा।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, स्वस्थ शरीर सुखी जीवन का आधार है, ये बात हम सभी जानते हैं। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन ही एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और साथ ही कह सकते हैं कि विटामिन शामिल करने से शरीर जो है वो हमारा स्वस्थ रहता है। हम कह सकते हैं कि भोजन में दूध, पत्तेदार सामग्री, ओट्स हो गए, अनाज को हमें जरूर शामिल करना चाहिए साथियों, जिनमें से दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं अंजलि जी।
1: जी जी।
0: जो शरीर के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी माने जाते हैं। साथियों, फलों में प्रचुर मात्रा में भोजन, वनस्पति और विटामिन साथ ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में ये सहायक भी होते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि इसी के साथ अब बात आती है सोने और जागने का सही समय। यानी कि श्रोता साथियों, हमारे शरीर के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जब हम कहते हैं तो हमारी अंतर्निहित प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर का उपचार करती है। श्रोता साथियों, नींद की दवा से मन, मस्तिष्क और शरीर को आराम मिलता है और कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं कशिश के, बहुत सी बार बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, तो ऐसे में वो नींद की दवाई ले लेते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क को आराम तो मिलता है लेकिन उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो जाती है।
0: जी जी।
1: ऐसे में श्रोता साथियों, सोने और जागने का सही समय होने से शरीर स्वस्थ, फुर्तीला और चुस्त दुरुस्त रहता है। निश्चित रूप से सही समय पर सोने और जागने से बच्चों का पिरामिड सिस्टम भी मजबूत होता है।
0: जी हाँ।
1: जिससे उन्हें सोने और जागने से बहुत सारे आराम मिलते हैं। असल में बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे सोना ही चाहिए, और हम देखते हैं कि जो बच्चे सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी अच्छी होती है, वो शारीरिक गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: वो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं, इसी के साथ उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ साथियों, नियमित रूप से व्यायाम और खेलकूद भी जरूरी है। यानी कि साथियों, खेलकूद और व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ।
0: नियमित व्यायाम और खेल से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। साथ ही कह सकते हैं कि बच्चों से कभी भी मना न करें आप, बल्कि संभव हो तो आप भी उनके साथ खेल खेल सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे आप भी ज्यादा फिट रहेंगे साथियों, और साथ ही आपके बच्चे भी अच्छा महसूस करेंगे।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि क्या ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो हमारे बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: तो बातें तो निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमारे बच्चों को कुछ हमें स्वस्थ आदतें सिखानी चाहिए जिससे वे स्वस्थ रह पाए।
1: जी जी।
0: इससे पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से दोपहर के भोजन का हमें ध्यान रखना है, साथ ही सोने जागने का समय व्यवस्थित होना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। यही अब बात आती है कशिश फास्ट फूड से दूरी की, यानी कि श्रोता साथी, जो हमारी निर्भरता बाजार में मिलने वाले जंक फूड से हो गई है उसे हमें कम करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ और सस्ते ईंधन से एक गाड़ी की सेहत खराब हो जाती है, उसी प्रकार के फास्ट फूड रूपी ईंधन से हमारे शरीर की सेहत भी खराब हो जाती है।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं कि आज हर भारतीय के खान पान का यह हिस्सा बन चुका है और जल्दी से तैयार होने वाला जंक फूड बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है कशिश।
1: जी जी।
0: जंक फूड में मौजूद अस्वस्थकर संतृप्त वसा कोर्स पदार्थ के कारण बच्चों में कम उम्र में ही मोटापा, कैंसर, हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो हमें देखने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए जल्द से जल्द हमें हमारे बच्चों को बताना है कि फास्ट फूड से दूरी करना उनके लिए क्यों जरूरी है और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के सामने आ सकती है उनकी उम्र के अनुसार। तो
1: जी,
0: हम उन्हें कहना चाहेंगे कि फास्ट फूड से ज्यादा हम हमारे घर पर बनी हुई चीजों का प्रयोग करें।
1: जी हाँ। इसी के साथ साथ ही मैदा, चीनी और नमक से भी दूरी बनाकर रखनी है। अंजलि जी, ये बताया गया है कि हमारी प्राचीन पद्धतियों में मैदा, चीनी और नमक को सफेद जहर के बराबर कहा गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका अधिकतर सेवन करने से श्रोताओं, हमारी कार्य क्षमता में कमी के साथ साथ शरीर पर भी बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
0: जी हाँ।
1: इनका अत्यधिक सेवन बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ाने की समस्या पैदा कर सकता है साथियों।
0: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि हर माता पिता को अपने बच्चों के खान पान में पोषण से जुड़े आहार पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए हल्का पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जल है। श्रोता साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन से शरीर की आधी बीमारी समाप्त हो जाती है।
1: जी हाँ। और हम देखते हैं कि लगभग हर माता पिता अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए डिजिटल सामग्री लेकर जाते हैं। वे बच्चों को खिलौनों से खेलने के बजाय डिजिटल सामग्री जैसे कि टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन, वीडियो गेम, इन सभी की लत लगा देते हैं। साथ ही जिससे बच्चों की आंखों की रोशनी खराब हो सकती है और बच्चे इसके शिकार भी हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आपको कहना चाहेंगे कि डिजिटल सामग्री का सीमित उपयोग करने से बच्चों के आत्मज्ञान विकास में मदद मिलेगी।
0: जी हाँ। तो कशिश, हम देखते हैं कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है साफ सफाई।
1: जी हाँ।
0: हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण में रहने से श्रोता साथियों शरीर स्वस्थ रहता है। अस्वच्छता के प्रति बच्चों को समीक्षा अवश्य हमें देनी चाहिए और बच्चों में स्वयं को स्वच्छ रखने से संबंधित जो आदतें हैं वो भी विकसित करना चाहिए, जैसे कि रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना और अपने आसपास की सफाई रखना, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें बच्चों को अवश्य सिखानी चाहिए।
1: बिल्कुल। इसी के साथ बताएं श्रोता साथियों, तो साफ सफाई के साथ साथ नियमित टीकाकरण भी जरूरी है। हम देखते हैं कि बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है। अंजलि जी।
0: जी बिल्कुल।
1: नियमित टीकाकरण बच्चों में रोग संबंधित क्षमता को पुनः प्राप्त करता है, जिससे खतरनाक वस्तुओं से बचाव में मदद मिलती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं।
0: जी हाँ। हम देखते हैं कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र होती है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छ वातावरण हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। बच्चों को घर के साथ साथ बाहर अपने आस पास कहीं भी गंदगी हमें फैलाने नहीं देना है। इसी के साथ बच्चों को बचपन से ही हमें ये सारी आदतें सिखा देनी है कि हमें किस तरीके से अपने आसपास की सफाई रखनी है और कहीं भी उन्हें गंदगी दिखती है तो उसके सफाई का वो प्रबंधन अवश्य खुद से करें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम।
0: जी बिल्कुल।

0: तो साथियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, जैसा कि श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल व्यायाम या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन को संतुलित सफल और खुशहाल बनाने का माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारा विषय है कशिश, योग का महत्व। श्रोता साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। आधुनिक सुविधाएं भी है लेकिन मानसिक संतुलन की कमी है। सफलता की दौड़ है लेकिन स्वास्थ्य पीछे छूटता जा रहा है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में हम देखते हैं कि योग एक ऐसी जीवन शैली बनकर सामने आता है कशिश, जो शरीर मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही कारण है कि हर वर्ष हम योग दिवस भी मनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे योग के महत्व को लेकर कि योग हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाए हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत आपसे कर रहे हैं। बात कर रहे हैं साथियों हमारे लिए योग के महत्व को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि आज के हमारे युवा साथी तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी की तैयारियां, करियर की चिंता, सामाजिक अपेक्षाएं, डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव, ये सभी युवाओं के जीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हम देखते हैं कि कई युवा ऐसे हैं जो तनाव, थकान, अनियमित दिनचर्या, चिंता और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना आज के समय में कर रहे हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, इन सभी चुनौतियों के बीच योग एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। यह व्यक्ति को स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पढ़ाई का दबाव हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गई, करियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव और बढ़ती मानसिक परेशानियां युवाओं को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में योग उनके लिए एक मजबूत सहारा बन सकता है। योग युवाओं को मानसिक शक्ति देता है, एकाग्रता बढ़ाता है, तनाव कम करता है, आत्मविश्वास विकसित करता है और जो युवा नियमित योग करते हैं वे अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: योग केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता श्रोता साथियों बल्कि सोच को भी सकारात्मक बनाता है। ये युवाओं को धैर्य सिखाता है, जैसा कि आपने बताया था, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज अनेक युवा घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इसका कारण है मोटापा, कमर दर्द और गर्दन दर्द, आंखों की समस्या बढ़ रही है और योग इन समस्याओं को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो योग शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने की एक प्राकृतिक तरीका भी है। देखते हैं कि नियमित योगाभ्यास से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में लचीलापन भी आता है। हम देखते हैं कि आज के हमारे युवा साथियों के सामने ढेर सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि तनाव और चिंता, नींद की कमी, आत्मविश्वास में गिरावट, चिड़चिड़ापन, मानसिक दबाव और समय प्रबंधन की समस्या। श्रोता साथियों, इन सभी चुनौतियों से निपटने का एक ही मात्र उपाय है, वो है योग, जो कि काफी प्रभावी भूमिका इसमें निभाता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि योग हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है क्योंकि योग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच पाती है साथियों, और हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि नियमित योग करने से शरीर लचीला बनता है जैसा कि आपने कहा था, और मांसपेशियां मजबूत रहती है। आज मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कई युवा चिंता में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं और निराशा जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत जरूरी उपयोगी है।
0: जी जी,
1: प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं श्रोताओं, वे नकारात्मक विचारों को कम करके सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। योग करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर पाता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कहना चाहेंगे कि जब मन शांत होता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छूटी लगने लगती है। योग व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हमारी युवा साथियों से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से योग जो है वो हमारे लिए काफी जरूरी है और हमारे स्वास्थ्य को लेकर तो अहम भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि योग का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों, गीत से पहले हमने मानसिक स्वास्थ्य योग के बारे में भी जाना था।
1: बिल्कुल,
0: शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान का क्या योगदान होता है ये भी जाना था। युवाओं के लिए योग क्यों महत्व है ये भी जाना, और आखिर योग क्या है ये भी बातचीत रही थी। यही जानते हैं आखिर योग हमें अनुशासन कैसे सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो कशिश, योग केवल आसानों का अभ्यास नहीं है, ये अनुशासित जीवन जीने की कला भी सिखाता है। योग करने वाला व्यक्ति समय का महत्व समझता है, वो अपने खान पान, दिनचर्या और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है।
1: बिल्कुल,
0: अनुशासन किसी भी सफलता की पहली शर्त है। जो युवा योग के माध्यम से अनुशासन सीख लेते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनका सही उपयोग लाभदायक है, लेकिन अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है।
1: बिल्कुल,
0: योग डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। योग हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। श्रोताओं, ये स्क्रीन की लत को कम करने और आत्मनियंत्रण विकसित करने में हमारी मदद करता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व को जाने, जागृति जी, तो देखते हैं कि युवावस्था में बड़ी संख्या में लोग विद्यार्थी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके लिए भी श्रोता साथियों योग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग करने से पढ़ाई में मन लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, परीक्षा का तनाव कम होता है, समय प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है, साथ ही मानसिक थकान भी कम होते हैं जागृति जी, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी युवा साथी हैं उनमें सीखने की क्षमता में सुधार होता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर बात करें तो नियमित योग करने वाले विद्यार्थी अधिक शांत, अनुशासित और आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि योग मन और शरीर के बीच संतुलन बनाकर आत्मविश्वास को मजबूत करता है, और जो आत्मविश्वासी युवा है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित भी रहते हैं।
0: जी हाँ कशिश, हर युवा अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि आत्मविश्वास से मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: योग व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का विकास करता है कशिश, और जब शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है तब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करने लगता है।
1: जी जी,
0: योग हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ युवा ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे। इसलिए योग स्वस्थ नागरिक तैयार करता है, ये लोगों में सकारात्मक सोच, सहनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए योग केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी आधार है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज अधिकांश युवा मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण आंखों की समस्याएं, गर्दन दर्द, पेट दर्द और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याएं उनमें बढ़ रही हैं। ऐसे में योग इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ये शरीर को साथियों सक्रिय रखता है, स्क्रीन पर निर्भरता से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करता है। साथ ही योग जो है वो युवाओं को डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना भी सिखाता है। कह सकते हैं जागृति जी युवा साथियों से कि योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाएगा बल्कि जीवन में अनुशासन भी लेकर आएगा।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में नियमित समय पर उठना, अभ्यास करना, संतुलित भोजन करना और सकारात्मक सोच रखना श्रोता साथियों योग की जीवन शैली का ही हिस्सा है। जो युवा अनुशासित होते हैं वे अपने लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त कर पाते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: और योग उन्हें समय का सही उपयोग करने के साथ साथ जीवन को व्यवस्थित ढंग से कैसे जीना है ये भी सिखाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि योग केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक होंगे। आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम योग को एक दिन का उत्सव न बनाकर जीवन का हिस्सा बनाए। यदि युवा पीढ़ी योग को अपनाती है तो वो न केवल स्वयं का भविष्य उज्ज्वल बना सकती है बल्कि समाज और राष्ट्र को भी नई दिशा दे सकती है।
1: जी जी,
0: इसलिए श्रोता साथियों हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में योग को स्थान दें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। क्योंकि याद रखिए, धन खो जाए तो कुछ खोता है, समय खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए लगभग सब कुछ खो जाता है। इसलिए योग वो शक्ति है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, हमारी छिपी हुई ऊर्जा को जगाती है और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है।
1: बिल्कुल, ऐसे में हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम युवा जो हैं वो योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ मिनटों का योग जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। ऐसे में योग हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसलिए जागृति जी, कहा भी जा सकता है कि योग युवाओं के लिए सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की एक मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को कशिश यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, आप हर सुबह योग करें, स्वस्थ जीवन का भोग करें, तन होगा मजबूत, मन होगा प्रकाश और योग से ही जीवन खास बनेगा। इन उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, बागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि हमारा युग तकनीक का युग है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारा जीवन किसी न किसी तकनीक से जुड़ा होता है। हम मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया ने जीवन को पहले की तुलना में और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे आपको कि तकनीक ने दूरी को कम किया है, समय की बचत की है और ज्ञान के नए द्वार खुले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी बार बार सामने आती है अंजलि, कि कहीं तकनीक इंसान से उसकी संवेदनाएं, भावनाएं और जीवन की वास्तविक अनुभूति तो नहीं छीन रहा। कई लोग मानते हैं कि मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य अकेला होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: परंतु सच्चाई ये है श्रोता साथियों कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकती, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद मशीनों में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय, उसके अनुभव और उसकी भावनाओं में बसता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हम इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों से बातचीत भी करी थी और हमने विषय भी बताया था।
1: बिल्कुल,
0: विषय हमने बताया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
1: जी हाँ जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह हमारे भावनाओं, संवेदनाओं, सपनों, संघर्षों और रिश्तों का एक संसार है। जीवन का वास्तविक आनंद केवल सुविधाओं से नहीं आता है श्रोता साथियों, बल्कि अनुभव से आता है। किसी प्रियजन का स्नेह, बच्चों की मुस्कान, खेतों में लहराती फसल, बारिश की पहली बूंद, मित्रों का साथ और परिवार का अपनापन।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, ये सब ऐसी अनुभूतियां हैं जिन्हें कोई मशीन नहीं बना सकती। तकनीक हमारे काम आसान तो कर सकती है, लेकिन हमारे दिल में उठने वाली भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। वह साधन हो सकती है, जीवन नहीं।
0: जी हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं अंजलि कि जीने की अनुभूति केवल सांस लेने का नाम नहीं है, ये प्रेम, करुणा, संघर्ष, सफलता, असफलता, आशा और सपनों का संगम है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, मित्रों के साथ हंसता है, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करता है या किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तब वो जीवन को वास्तव में जीता है।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक इन अनुभवों को आसान बना सकती है, लेकिन उन्हें पैदा नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि मनुष्य की भावनाएं किसी मशीन द्वारा निर्मित नहीं होती, वे उसके भीतर से निकलती है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कि आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पढ़ाई, खेती, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। पहले किसी समाचार को गांव तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: आज कुछ सेकंड में पूरी दुनिया तक जानकारी पहुंच जाती है। पहले डॉक्टर तक पहुंचना कठिन होता था, आज ऑनलाइन परामर्श संभव है। किसानों को मौसम की जानकारी मोबाइल पर मिल जाती है। तो श्रोता साथी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तकनीक को नकारा नहीं जा सकता, यह मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन है जागृति जी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम तकनीक को साधन के बजाय जीवन का केंद्र बना लेते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि तकनीक ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है, लेकिन उसने हमारे सपनों को नहीं बदला।
1: बिल्कुल,
0: आज भी हर युवा अपने जीवन में सफलता, सम्मान और खुशियों की तलाश करता है। वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता है और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहता है। ये इच्छाएं श्रोता साथियों हजारों वर्षों से मानव जीवन का हिस्सा बनी रही है, आगे भी रहेंगी। तकनीक केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। इसीलिए ये कहना गलत होगा अंजलि कि तकनीक जीवन की अनुभूति को समाप्त कर सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास हर आधुनिक सुविधा है, उसके पास महंगा मोबाइल है, तेज इंटरनेट है, आरामदायक घर है, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रेम, अपनापन और संतोष नहीं है, तो क्या वह वास्तव में खुश रहेगा? तो श्रोता साथियों, जीवन का अर्थ केवल सुविधा प्राप्त करना नहीं है, जीवन का अर्थ महसूस करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, जब कोई किसान मेहनत के बाद अपनी फसल देखता है, जब कोई विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, तब जो खुशी मिलती है वह किसी मशीन द्वारा नहीं दी जा सकती। तकनीक सुविधा दे सकती है, लेकिन भावनाएं नहीं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद सरल चीजों में छिपा हुआ है। बारिश की पहली बूंद, पक्षियों का मधुर स्वर, खेतों में लहलाती फसल, बच्चों की मुस्कान और माता पिता का स्नेह, ये सब अनुभूतियां हैं जिन्हें कोई तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, मनुष्य का हृदय इन अनुभवों से जुड़ा रहेगा। और यही कारण है कि आज भी लोग व्यस्त जीवन से समय निकाल कर प्रकृति के बीच जाना पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल शाकृति जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि कोई भी तकनीक हमारे जीवन की अनुभूति हमसे नहीं छीन सकती। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, हमने गीत से पहले बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और तस्वीरें साझा कर सकते हैं। यह सब उपयोगी है जागृति जी, लेकिन सोचिए श्रोता साथियों कि किसी प्रिय व्यक्ति का हाथ पकड़कर बात करना और मोबाइल स्क्रीन पर बात करना, दोनों में कितना अंतर है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों की असली ताकत उसकी उपस्थिति में होती है। एक माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन, मित्र का साथ और परिवार का सहयोग, इनकी जगह कोई तकनीक नहीं ले सकती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे संवाद, सहयोग और अपनापन चाहिए होता है, और यह आवश्यकता जागृति जी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब मनुष्य अपनी सोच, संवेदनाओं और निर्णयों पर स्वयं निर्णय रखता है, तभी वो वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, यदि हम तकनीक का उपयोग अपने विवेक से करते हैं और उसे अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देते, तो हम सच्चे अर्थों में स्वराज की भावनाओं को जीवित रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसका स्वामी बनना ही आधुनिक युग का सच्चा स्वराज है। अंजलि, इतिहास गवाह की हर नई तकनीक के आगमन पर लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की है। जब छापाखाना आया, तब भी लोगों को डर था कि पारंपरिक ज्ञान समाप्त हो जाएगा। जब रेडियो और टेलीविजन आए, तब भी अनेक चिंताएं व्यक्त की गई, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि मनुष्य ने हर तकनीक को अपने अनुसार ढाल लिया। आज भी वही होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नए डिजिटल तकनीकों के बावजूद मानवीय संवेदनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि वे मनुष्य के आत्मा से जुड़ी हुई है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि तकनीक हमें मौसम की जानकारी दे सकती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बारिश की बूंदों का स्पर्श महसूस नहीं करा सकती। मोबाइल पर जंगल की तस्वीरें दिखाई जा सकती है, लेकिन पेड़ों की ठंडी छाया का अनुभव नहीं किया जा सकता। किसी वीडियो में नदी दिखाई जा सकती है श्रोता साथियों, लेकिन बहते पानी की आवाज और उनके किनारे बैठने की शांति का अनुभव नहीं कराया जा सकता। प्रकृति के साथ हमारा संबंध केवल देखने का नहीं है जागृति जी, बल्कि महसूस करने का है, और यही अनुभूति जीवन को सुंदर बनाती है। तकनीक कई कामों को आसान बना सकती है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद अक्सर संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता में छिपा होता है।
1: जी हाँ।
0: जब कोई विद्यार्थी श्रोता साथियों कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा में सफल होता है, जब कोई महिला अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाती है, जब कोई किसान जागृति जी विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी फसल उगाता है, तब जो संतोष मिलता है वह केवल परिणाम से नहीं बल्कि पूरी यात्रा का मिलता है।
1: जी हाँ।
0: मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन संघर्ष की कहानी नहीं जीत सकती।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रचनात्मकता है। एक कवि की कविता, एक कलाकार की कल्पना, एक किसान का परिश्रम, एक शिक्षक का समर्पण और एक माँ का प्रेम किसी मशीन द्वारा पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
0: जी जी,
1: तकनीक इन कार्यों में सहायता कर सकती है, परंतु इनके पीछे छिपी भावनाओं का स्रोत मनुष्य ही रहेगा। यही कारण है कि जीवन की अनुभूति सदैव जीवित रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें। हमें बच्चों को केवल डिजिटल कौशल ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखानी होगी।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये याद रखना होगा कि जीवन की गुणवत्ता केवल आधुनिक उपकरणों से नहीं बल्कि अच्छे संबंधों, अच्छे विचारों और सकारात्मक कर्मों से निर्धारित होती है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
0: जी जी।
1: तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए अंजलि, वो मनुष्य के हृदय में बसे प्रेम, करुणा, आशा और संवेदनाओं का स्थान नहीं ले सकती। जीवन की सच्ची अनुभूति हमारे अनुभव, रिश्तों, संघर्ष और सपनों में बसती है श्रोताओं। इसीलिए हमें तकनीक से डरने की नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम तकनीक को साधन और मानवीय मूल्यों को आधार बनाए रखेंगे, तब जीवन की खुशियां और भी अधिक गहरी हो जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी,
1: तकनीक जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन जीवन का अर्थ केवल इंसान ही महसूस कर सकता है। यही सच्चा स्वराज है, यही मानवता की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मनुष्य हंसता है, रोता है, सपने देखता है और उम्मीद करता है और दूसरों के सुख दुख में शामिल भी होता है। तकनीक गणना कर सकती है, लेकिन करुणा नहीं दिखा सकती। वो उत्तर दे सकती है, लेकिन किसी के दर्द को मनुष्य की तरह महसूस नहीं कर सकती। जीवन की असली शक्ति हमारी भावनाओं में है और यही हमें इंसान बनाती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों और युवाओं को यह समझाएं कि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे कहीं बड़ा है। उन्हें किताबों के साथ अनुभव भी चाहिए, मोबाइल के साथ मित्र भी चाहिए, इंटरनेट के साथ इंसानियत भी चाहिए और जानकारी के साथ संवेदनशीलता भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब ये सभी चीजें साथ चलेंगी तभी जीवन संतुलित और सुखी बन पाएगा।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है।

धीरे से लावो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। श्रोता साथियों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर मुस्कान खुशी नहीं होती, हर तस्वीर पूरी कहानी नहीं होती। जो दुनिया मोबाइल में दिखाई देती है वह हमेशा जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आज लगभग हर उम्र के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बच्चों से लेकर युवाओं तक और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और असली जीवन में फर्क समझना क्यों जरूरी है। जी हाँ साथियों, आज मोबाइल हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारी पहुंच में है और दुनिया हमारी स्क्रीन पर है। और जैसा कि हम दुनिया को देख रहे हैं तो हम सभी सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले भी उसी पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया ने साथियों हमें दुनिया से जुड़ने का काम तो किया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। असली जीवन और दिखाए जाने वाले जीवन के बीच अंतर को समझना, तो आज कार्यक्रम में हमारी इस विषय पर आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और असली जीवन में फर्क समझना क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, यही सबसे पहले बात आती है कि सोशल मीडिया की दुनिया आखिरकार है क्या। हम सभी के मन में ये सवाल आता है, तो आपको बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां लोग अपने विचार, तस्वीरें, वीडियो और अनुभव साझा करते हैं। यह एक उपयोगी माध्यम है जानकारी पाने के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए और अपने हुनर को दिखाने के लिए और सीखने सिखाने के लिए। लेकिन साथियों, समस्या तब शुरू होती है जब हम सोशल मीडिया को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा ही दिखाते हैं, पूरा जीवन नहीं दिखाते। किसी ने कहा है कि सोशल मीडिया जिंदगी की झलक दिखाता है, पूरी जिंदगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो हमें दिखाई देता है किसी की सफलता, किसी की यात्रा, किसी की नई खरीदी, किसी की मुस्कुराती तस्वीरें। लेकिन हमें यह नहीं दिखाई देता कि उसके पीछे क्या मेहनत हुई है, उसकी असफलताएं कितनी रही होंगी, उसकी कितनी चिंताएं हैं, उसके संघर्ष। यही कारण है कि कई बार लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। आज बहुत से लोग अपनी तुलना उन तस्वीरों और वीडियो से करने लगे हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है, मैं उतना सफल क्यों नहीं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे तुलना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है और अभी के समय में ये जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहना चाहूंगी मैं कार्यक्रम के माध्यम से कि जब हम अपनी असली जिंदगी की तुलना किसी की चुनी हुई तस्वीरों से करते हैं तो हम खुद के साथ न्याय नहीं करते। श्रोता साथियों, असली जीवन में संघर्ष होते हैं, असफलताएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और भावनाएं होती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अक्सर केवल उपलब्धियां दिखाई देती हैं। असली जीवन में इंसान सीखता है, गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया पर कई बार केवल मंजिल दिखाई देती है, सफर नहीं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन की तुलना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों की उपलब्धियां, सफलता और उन सारी चीजों को दिखाकर ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कितना पीछे हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ऐसा मत सोचिए। या आप ये सोचते हैं कि मुझे तो सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां होती है, मैं कैसे मेहनत करता हूँ, इन लोगों के पास कहाँ से समय आता है, ये इतनी रील्स कैसे बना लेते हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग होता है और जो सोशल मीडिया पर चीजें बताई जाती हैं, उनकी अच्छी जिंदगी बताई जाती है, उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। उनके पीछे संघर्ष होता है, असफलताएं होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं और भावनाएं भी होती हैं, लेकिन वो सब चीजें हम नहीं देख पाते। इसलिए दोस्तों, जब भी हम सोशल मीडिया को लेकर कुछ अलग चीजें सोचने लगे, यानी कि नकारात्मक सोचने लगे, तो हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पोज देने की जरूरत है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हमें अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी है। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें मेरी आपसे चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे कुछ अनकही बातें होती हैं। जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता, जिंदगी कैमरे से बड़ी होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनको लेकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, ढेर सारी बातें। और सोशल मीडिया पर जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में और ज्यादा आने लगती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अच्छा जीवन ही दिखाया जाता है, उसके पीछे का संघर्ष, असफलताएं, जिम्मेदारी और भावनाएं नहीं दिखाई जाती। इसलिए श्रोता साथियों, युवा वर्ग को सोशल मीडिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ हम महसूस करते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भी उन पर ही पड़ रहा है। इसके सकारात्मक पहलू की बात करें तो युवा साथियों को इससे सीखने के अवसर मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है। कई युवा साथी इन सारी चीजों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं और उनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है। और बहुत ज्यादा इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से हम देखते हैं कि समय की बर्बादी होती है, तुलना की आदत बनती जाती है और मानसिक तनाव जन्म लेता है। श्रोता साथियों, जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की उपलब्धियां देखता है तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, हम हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति की उपलब्धियां, उनकी रुचि, उनके जीवन के लक्ष्य, उनके जीवन का संघर्ष, उनके जीवन की जिम्मेदारी, सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन की तुलना किसी और व्यक्ति के जीवन से नहीं करनी है। हमारे जीवन में हमारे पास जो है उससे हमें संतुष्ट भी रहना है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ श्रोता साथियों कि आप जीवन में प्रयास ही ना करें, आप प्रयास करते रहिए, आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे। लेकिन उस बदलाव के लिए आप अपने जीवन में मानसिक तनाव को न घेरें, कि मानसिक तनाव एक ऐसा तनाव है जो हमारे जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए प्रयास करते रहिए, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ, बच्चों और किशोर जो है वो अभी अपनी पहचान बना रहे होते हैं। इसी के साथ अब अगर बात करें कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों और किशोरों पर कैसे पड़ रहा है तो हम देखते हैं कि यह जो समय होता है वो बच्चों की पहचान बनाने का होता है। यदि वे सोशल मीडिया को ही वास्तविकता मान ले तो उनके मन में कई गलत धारणाएं बन सकती हैं। वे सोच सकते हैं कि सुंदर दिखना ही सफलता है, लोकप्रिय होना ही खुशी है और ज्यादा लाइक्स मिलना ही मूल्य है। श्रोता साथियों, लेकिन असली जीवन इन चीजों से कहीं बड़ा है। असली जीवन में परिवार का साथ होता है, दोस्तों की सच्ची दोस्ती होती है, मेहनत का आनंद होता है और छोटे छोटे पलों की खुशी होती है। ये सब चीजें लाइक्स और फॉलोवर्स से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा समय जीवन में खुद के लिए निकालिए और अगर आप इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं और तनाव ले रहे हैं तो आप खुद के लिए समय निकाल कर शांत मन से सोचिएगा कि असली खुशी किस चीज में है, सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी में या असल जीवन में परिवार का साथ, सच्ची दोस्ती, मेहनत और कुछ छोटे छोटे पलों की खुशियों में है। क्योंकि दोस्तों, असली खुशी स्क्रीन में नहीं होती, रिश्तों और अनुभव से मिलती है। सोशल मीडिया से दूर भागना समाधान नहीं होगा, जरूरत है उसका संतुलित उपयोग करने की। सीखने के लिए उपयोग करें, जानकारी के लिए उपयोग करें, प्रेरणा के लिए उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान उससे मत जोड़िए, अपनी खुशी उससे मत सौंपिए, अपनी तुलना उससे मत कीजिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रोज दूसरों की जिंदगी देखने में घंटों बिताता है श्रोता साथियों, तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना भूल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया को साधन की तरह इस्तेमाल करता है वह उससे लाभ भी लेता है और संतुलन भी बनाए रखता है। आज श्रोता साथियों, इस बात की है कि हम बच्चों, युवाओं और परिवारों को ये समझाएं कि सोशल मीडिया जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसके गुलाम न बने। ऑनलाइन दुनिया से जुड़ें लेकिन ऑफलाइन रिश्तों को न भूलें। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया आधुनिक समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भले ही है, इससे दुनिया को जोड़ने, सीखने, अवसर तक पहुंचाने का रास्ता जरूर दिया है। लेकिन इसके साथ यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है।
असली जीवन में मेहनत है, संघर्ष है, धैर्य है, रिश्ते हैं और अनुभव है, और यही चीजें इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपने आत्मविश्वास को उससे निर्धारित न होने दें, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर स्क्रीन पर नहीं, हमारे आसपास मौजूद होती है। मोबाइल की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है साथियों, जहां अपनों की आवाज है और रिश्तों की गर्माहट है। सोशल मीडिया को साधन बनाइए, जीवन नहीं, क्योंकि असली जिंदगी हमेशा स्क्रीन के उस पार आपका इंतजार कर रही होती है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अब समय हो चला है हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है योग के महत्व को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 21 जून का दिन है और कल ही के दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कल के दिन हमारी मुलाकात हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में नहीं हो पाएगी, इसलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई है। ऐसे समय में योग एक ऐसी जीवन शैली के रूप में सामने आता है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जानेंगे कि योग क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों हम बातें कर रहे थे योग दिवस के महत्व को लेकर, यही अंजलि जी हम देखते हैं कि मानव जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है।
1: बिल्कुल,
0: यदि शरीर स्वस्थ है और मन शांत हो तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती भाग दौड़, तनाव, अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं वो उत्पन्न हो रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में योग है श्रोता साथियों की ऐसी प्राचीन विद्या है जो शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। योग केवल व्यायाम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बनाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर मन और आत्मा को जोड़ने की एक प्राचीन पद्धति है।
0: बिल्कुल,
1: योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। योग हमें श्रोता साथियों अपने भीतर झांकना सिखाता है।
0: यह
1: केवल शरीर को लचीला बनाने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग भी है। भारत को योग की जन्मभूमि माना जाता है। हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की शक्ति को पहचाना और इसे जीवन का हिस्सा बनाया। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है। हर वर्ष जैसा कि कल हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, ये इस बात का प्रमाण है श्रोता साथियों कि योग उपयोगिता केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे अपना रही है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की नींव है। योग शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन, मांसपेशियां मजबूत होना, रक्त संचार बेहतर होना, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, मोटापन नियंत्रित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हृदय फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं। आज कई लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: योग इन समस्याओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि योग हमें केवल रोगों से बचाने का कार्य नहीं करता बल्कि जीवन जीने की सही कला भी सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: योग के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना और भावनाओं को संतुलित रखना और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखता है। योग की इसी महत्ता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए श्रोता साथियों हर वर्ष 21 जून यानी कि कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूरी दुनिया को स्वस्थ, शांत और संतुलित रखने का संदेश देता है। श्रोता साथियों, योग किसी धर्म, जाति या देश विशेष तक सीमित नहीं है बल्कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी है।
1: जी हाँ मनीषा, आज मानसिक तनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य के अनिश्चितता लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर रही है।
0: जी हाँ,
1: योग और प्राणायाम मन को शांत करने में मदद करते हैं। योग से तनाव कम होता है, चिंता और घबराहट घटती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता में सुधार होता है और नींद अच्छी आती है।
0: बिल्कुल,
1: जब मन शांत होता है श्रोता साथियों तब व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसी के साथ बच्चों के लिए भी योग का बहुत ज्यादा महत्व है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों के विकास में योग की विशेष भूमिका है। योग बच्चों को अनुशासन सिखाता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, शारीरिक विकास में सहायक करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। आज मोबाइल और टीवी के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं। ऐसे में योग उन्हें सक्रिय और स्वस्थ रहने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि योग से हमारे शरीर पर क्या लाभ प्राप्त होते हैं तो हम देखते हैं कि योग से स्वस्थ और मजबूत बनता है हमारा शरीर। नियमित योगा अभ्यास से शरीर लचीलापन है वो बढ़ता है श्रोता साथियों, और साथ ही हमारी मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती हैं। साथ ही श्रोता साथियों इससे हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की ऊर्जा है वो भी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, साथ ही मोटापा नियंत्रित रहता है। श्रोता साथियों रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय रोगों का खतरा है वो भी कम हो जाता है और साथ ही शरीर में संतुलन और लचीलापन भी आता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि योग किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि महिलाएं परिवार और समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। उनकी सेहत अच्छी होगी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। योग महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, हार्मोन संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, तनाव कम करता है, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायक होता है, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल,
1: नियमित योग महिलाओं को अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और जीवन जीने में मदद करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, जोड़ों का दर्द, कमजोरी और संतुलन की समस्या आम हो जाती है। योग बुजुर्गों को शरीर योग बुजुर्गों के शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है, क्योंकि योग के कारण बुजुर्ग अधिक आत्मविश्वासी और खुशी जीवन महसूस कर पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का जीवन तनावपूर्ण और व्यस्त हो गया है। मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों की बढ़ती निर्भरता हमारे लिए मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी समस्याएं वो उत्पन्न कर रहा है। योग इन सभी समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान है। श्रोता साथियों, यह व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व के लगभग सभी देशों में पहुंच चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा और अन्य अनेक देशों में लाखों लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में सामूहिक योग कार्यक्रम, कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान और स्वस्थ शिविर आयोजित किए जाते हैं। इससे हम देखते हैं कि योग के प्रति लोगों की रुचि है वो और बढ़ती है और लोग जागरूक होते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है श्रोता साथियों से कि योग का क्या महत्व है और किस तरीके से योग को हमें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: बातें इस तरीके से यूं ही आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं।
1: जी हाँ,
0: जोड़ों का दर्द, कमजोरी और संतुलन की समस्या आम हो जाती है। योग बुजुर्गों को मनीषा शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। योग के कारण बुजुर्ग अधिक आत्मविश्वास और खुशी के साथ जीवन जीत सकते हैं। योग के वर्षता साथियों कुछ आसानों का अभ्यास नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग हमें सिखाते हैं कि समय का सदुपयोग हमें कैसे करना है, संयमित जीवन जीना, संतुलित भोजन करना, सकारात्मक सोच रखना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना। जब योग जीवन का हिस्सा बन जाता है तब व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,

0: किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमें जल्दी उठना है, स्वच्छ और शांत स्थान चुनना है और प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग करना है। प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना होगा और नियमितता बनाए रखनी होगी। छोटे छोटे प्रयास भी श्रोता साथियों लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम योग को लेकर जब बहुत सारी चीजें सुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि वास्तव में हमें हमारे जीवन में योग को महत्व देना है। हम एक दो दिन शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम आलसी होते जाते हैं। हम ये सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसे में नियमितता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि एक दो दिन योग कर लिया और फिर चार पांच दिन वापस अच्छे से सो गए, तो ऐसे में हमारा स्वास्थ्य और खराब हो सकता है। हमें योग की नियमितता को बनाए रखना जरूरी है। जब हम योग की नियमितता को बनाए रखकर योग प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा मन शांत रहता है और हम कई समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसा कि मनीषा हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए कि योग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है।
1: जी हाँ।
0: और स्वस्थ व्यक्ति निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास भी बहुत अच्छे से कर सकता है। आज के समय में दुनिया जो है वो तेज रफ्तार वाली हो गई है। ऐसे में हर पल हमारे सामने कोई ना कोई एक बड़ी चुनौती होती है और अगर हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत है तो हम उसमें जल्दबाजी में निर्णय लेंगे लेकिन वो भी सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम अंदर से ही टूटे हुए रहेंगे, तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय सही तरीके से भी नहीं ले पाएंगे और हमारा जीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में योग का विशेष महत्व होता है। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाएं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। योग विद्यार्थी को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है, मानसिक थकान को दूर करता है, साथ ही आत्म अनुशासन को भी बढ़ाता है। श्रोता साथियों, परीक्षा में तनाव को कम करता है यह, और यदि विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ समय अंजलि जी योग और प्राणायाम करे तो उसके पढ़ाई और व्यक्तित्व दोनों का सकारात्मक परिवर्तन आता है।
0: बिल्कुल मनीषा, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की कला है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि मन की शांति, विचारों की स्पष्टता और जीवन के संतुलन में होती है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है श्रोता साथियों, तब योग हमें अपने मूल्यों, अपने स्वास्थ्य और अपने भीतर की शक्ति से जोड़ने का कार्य करता है।
1: बिल्कुल,
0: योग हमें यह संदेश देता है कि सुखी जीवन का रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से होकर गुजरता है। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदत बनाए, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी परिवार स्वस्थ होगा और जब परिवार स्वस्थ होगा तभी समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्त बन सकेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि युवाओं के लिए योग का क्या महत्व है तो हम देखते हैं कि युवा देश के भविष्य होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज कई युवा है वो मोबाइल, इंटरनेट और असंतुलित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे युवा साथी योग करते हैं तो वो शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, नशे जैसी बुरी आदतें हैं उनसे भी वे दूर रहेंगे, आत्मनियंत्रण करना सीखेंगे, नेतृत्व क्षमता को विकसित करेंगी, साथ ही मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। योग युवाओं को केवल स्वस्थ नहीं बनाता है साथियों बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी आगे ले जाता है। योग हमें सिखाता है साथियों कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को स्वस्थ जीवन देता है बल्कि श्रोता साथियों मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करने में सहायता करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो इससे हम हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी स्वस्थ रख पाते हैं, क्योंकि यही आदतें हमारे बच्चे भी हमसे देखकर सीखते हैं।
1: जी हाँ।
0: जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल लंबी उम्र पाना नहीं है श्रोता साथियों बल्कि स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन जीना है। योग हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि शरीर की मजबूती, मन की स्थिरता और विचारों की पवित्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
1: जी हाँ।
0: जब इन तीनों में सामंजस्य स्थापित होता है तभी व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक क्षमता को पहचान पाता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। लोगों के पास साधन है लेकिन समय नहीं, जानकारी है लेकिन मन की शांति नहीं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे दौर में योग एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में सामने आता है जो हमें स्वयं से जुड़ने का अवसर देती है। यह हमें अपने शरीर की भाषा सुनना, अपने मन को समझाना और अपने जीवन को सही दिशा में देना सिखाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के

0: माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से योग के महत्व को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथी हम बातें कर रहे थे योग के महत्व को लेकर, अंजलि जी हम देखते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: नकारात्मक विचार व्यक्ति की ऊर्जा को कम कर देते हैं और उसके आत्मविश्वास को कमजोर बना देते हैं।
1: जी,
0: श्रोता साथियों योग मन को शांत करके सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करना सीखता है। जब मन शांत होता है श्रोता साथियों तब व्यक्ति समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। योग हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम धैर्य कैसे बनाकर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हर चुनौती का सामना हम सांस के साथ करना कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार योग जीवन के अवसाद और आत्मविश्वास का संचार करता है।
1: जी हाँ मनीषा, हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि योग किसी विशेष वर्ग, आयु या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। चाहे कोई बच्चा हो या बुजुर्ग, विद्यार्थी हो या किसान, गृहिणी हो या नौकरी पेशा, व्यक्ति हर कोई अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार योग को अपना सकता है। योग हमें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि आत्मविकास का संदेश देता है। इसमें दूसरों से आगे निकलने की नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा छिपी होती है।
0: जी हाँ।
1: हम अपने व्यस्त जीवन में कुछ पल अपने लिए निकालें, सुबह की ताजी हवा में कुछ मिनट योग करें, गहरी सांस के साथ अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। याद रखिए कि स्वस्थ शरीर और शांत मन किसी भी सफलता की सबसे मजबूत नींव होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब हम अपने जीवन की ओर ध्यान से देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि अधिकांश परेशानियां बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के असंतुलन से जन्म लेती है।
0: जी हाँ।
1: कभी मन भटकता है, कभी शरीर थक जाता है तो कभी भावनाएं हमें कमजोर बना देती है। योगी असंतुलन को संतुलन में बदलने की एक सशक्त प्रक्रिया है। यह हमें जीवन को केवल जीने नहीं बल्कि समझने और संवारने की कला सिखाता है। योग का सबसे बड़ा संदेश है जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होना और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना। जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सजग हो जाता है तो वह छोटी छोटी गलत आदतों को पहचान कर उन्हें सुधारना शुरू कर देता है और यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि योग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज के सद्भाव और भाईचारे की भावनाओं को भी बढ़ावा देता है।
1: बिल्कुल।
0: योग का मूल संदेश है श्रोता साथियों सभी के प्रति प्रेम और सम्मान और सहयोग की भावना। जब लोग सामूहिक रूप से योग करते हैं तब उसमें एकता और सहयोग की भावनाएं विकसित होती है।
1: जी हाँ।
0: योग हमें समझने में मदद करता है कि मानवता की भलाई सबसे बड़ा धर्म है। जाति, भाषा, धर्म के क्षेत्र की इन सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का संदेश यह हमें देता है। यही कारण है अंजलि जी कि आज योग को वैश्विक शांति का माध्यम भी माना जा सकता है।
1: जी हाँ बिल्कुल। आज समय में बढ़ती अधीरता, तनाव, अकेलापन और असंतोष जैसी चुनौतियां केवल दवाइयों से नहीं सुलझ सकती मनीषा, इसके लिए जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। योग हमें रुककर स्वयं को देखने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। जिस प्रकार पौधे को बढ़ने के लिए श्रोता साथियों पानी चाहिए होता है, उसी प्रकार मन और शरीर को संतुलित रखने के लिए योग जैसे सकारात्मक अभ्यासों की आवश्यकता होती है। योग हमें प्रकृति के और करीब ले जाता है। यह सादगी, संयम और संतुलन की भावना को मजबूत करता है। जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ और संतुलित होता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, कार्यस्थल और पूरे समाज पर दिखाई देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याएं वो भी बढ़ रही हैं। इन बीमारियों का प्रमुख कारण है श्रोता साथियों कि हमारी जो दिनचर्या है वो असंतुलित है और शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम होती जा रही हैं। योग नियमित रूप से करने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता है वे बेहतर होती है अंजलि जी। यह शरीर के रक्तचाप को ठीक करता है, चयापचय को संतुलित रखता है और साथ ही योग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
1: हाँ।
0: जिससे हम देखते हैं कि हम जो रोग होते हैं अनेक संभावनाएं उनकी कम हो जाती हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी आज रोगों के उपचार के साथ साथ योग को अपनाने की सलाह देते हैं क्योंकि यह शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
1: जी हाँ जी हाँ मनीषा, योग को किसी विशेष अवसर या उत्सव तक सीमित नहीं रखना है।
0: जी
1: इसे अपने दैनिक जीवन का एक ऐसा साथी बनाना है जो हर परिस्थिति में अपना मार्गदर्शन करे। यह न केवल शरीर को सक्रिय बनाएगा बल्कि जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण भी अधिक सकारात्मक, धैर्यवान और आशावादी बनाएगा।
0: जी हाँ।
1: हम सभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जिसमें संतुलन हो, आत्मविश्वास हो, शांति हो, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, और यही योग का वास्तविक सार है।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: यही एक स्वस्थ, सुखी और सार्थक जीवन की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको योग के महत्व को बताना चाहेंगे कि योग किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो हमेशा थका थका रहता था, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता। एक दिन गांव में योग शिविर लगा, रमेश ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, उसका तनाव कम हो गया और वो पहले से अधिक खुश रहने लगा। तो श्रोता साथियों, जब लोगों ने उसे के बदलाव के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में योग को जगह दी है और योग ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में योग को अपनाने की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि योग अपनाने से हमारा जो जीवन है वो ऊर्जावान बना रहता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि बचपन से ही बच्चों और युवाओं के योग के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां अधिक स्वस्थ, संतुलित और जिम्मेदार बन सकती हैं। विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। श्रोता साथियों, योग बच्चों में आत्मविश्वास, एकाग्रता और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। यह उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। श्रोता साथियों, आने वाले समय में योग केवल एक अभ्यास नहीं रहेगा बल्कि स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण का आधार बनेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए प्रत्येक परिवार को, विद्यालय को और सामुदायिक को योग के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, किसी भी समाज की वास्तविक समृद्धि केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि उसके लोगों के स्वास्थ्य, संतुलित सोच और खुशहाल जीवन से मापी जाती है। यदि व्यक्ति भीतर से मजबूत है तो वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: योग इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का माध्यम है। योग हमें यह समझाता है कि जीवन केवल भागते रहने का नाम नहीं है, कभी कभार रुककर स्वयं को समझना, अपनी जरूरतों को पहचानना और अपने मन व शरीर की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। आज हम अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तब हम न केवल बेहतर महसूस करते हैं बल्कि अपने परिवार, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी अधिक प्रभावी ढंग से निभा पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: आज की पीढ़ी के सामने अनेक अवसर हैं लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता स्क्रीन टाइम, प्रकृति से दूरी होती दिनचर्या और हर समय आगे निकलने की होड़ ने जीवन को जटिल बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में योग हमें संतुलन का रास्ता दिखाता है। यह सिखाता है कि सफलता तभी सार्थक है जब उसके साथ स्वास्थ्य, संतोष और मानसिक शांति जुड़ी हुई हो।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ने का एक वैश्विक अभियान है।
1: बिल्कुल।
0: योग भारत की अमूल्य धरोहर है श्रोता साथियों, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ, शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। आज जब मानव तनाव, प्रदूषण, अनियमित दिनचर्या और अनेक बीमारियों से घिरा हुआ है तब योग एक सरल और सस्ता और प्रभावी माध्यम हमारे लिए सिद्ध हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: योग हमें अपने जीवन को समझने, अपने समय का सदुपयोग करने और अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने, साथ ही हमें अवसर कैसे प्राप्त करने हैं उन सब की जानकारी हमें देता है। यदि व्यक्ति को बाहरी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है श्रोता साथियों, योग का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, स्वयं को बेहतर बनाना चाहिए और हर परिस्थिति के अनुसार हमें स्वयं को ढालना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो बातें कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो गई है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को नमस्कार।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे योग दिवस को लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नर्तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर सिटी से। फिल्म का नाम है हकीकत, गीत के बोल हैं ओ जाने जा तू हसी में जवां। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्ट्रो, रोजे डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलिजे डिकिस्ट्रो। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना और हृदयांजी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ जाने जा तू हसी में जवां। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी, गीत के बोल है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा, नीराजी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बागपत से। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से। जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेई देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, दिल्ली से जुड़ रही हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती मुनेश देवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे कोखा बलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेज, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, आदित्य जंगेल और अंजलि जी जंगेल। जवाहरनगर दुर्ग से जुड़ना चाह रही हैं आरसी कामड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल।

जी कामड़ी। इस गीत की अनुरोध करता है मजनू का टीले से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रही पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना ताई गुड़ानी, हीरामन शिंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ानी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हम सब चोर, गीत के बोल हैं सावली सलोनी तेरी झील जैसी आंखें। इस गीत की फरमाइश करते हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रणाली और सार्थक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंचु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। पंडितपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। भागपत से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है कंजड़वारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फेज जी। और भी साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू जी वड़तकर। पटियाकला दुर्ग से जुड़ रहे हैं संजेश शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू, सुजीता जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीवी अमिका वानी जी थांदी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सिरसा हरियाणा से। फिल्म का नाम है दामिनी, गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे गवाह हैं। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू और अलका जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा और

वासी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही मेरा आप जहाँ जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इस गीत की अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे गवाह हैं। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू और अरका जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कुमार सोनू और अलका जी की आवाज़ में दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे गवाह हैं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर मालोट सी। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, आरजू झांझोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। राजगढ़ बिहार से जुड़ रही उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा, कमल उमा। खड़वा से जुड़ रही हैं राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई जी। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं निशा डोमिन, उषा डोमिन, जानवी डोमिन जी। सहारनपुरा से जुड़ रही हैं देवेंद्र यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेंद्र यादव, नरेंद्र जी यादव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं सनावत से मोहम्मद सूफियाना, हाशिब जी, इशाक जी और बब्लू डब्लू जी और बेबी आयशा जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोड़ानी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती यादव, पूजा यादव, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकता यादव और संगीता जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिहार स्टेट डुमराव सी, राज एडी अंसारी, नरसी अंसारी, वलीउल्ला अंसारी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं असीम वक्कार जी। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं प्रभा रानी बेलदार, कुमारी दुर्गा बेलदार और शंकर देव बेलदार जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत की फरमाइश करते हैं शमशुल कमर राहे, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रंजित भाटिया, मयंक जी भाटिया। कुरावली से जुड़ रही हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका जी कीटे। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रही हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नेटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीओ सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफार, मोहम्मद इर्जाद, नरगिस जी खातून। इसे भी जुड़ना चाह रहे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और बेबी बॉय हिमांश जी। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। कलानौर से जुड़ना चाह रही नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक जी शर्मा। कुरावली से जुड़ रही साईद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, असना अंसारी और मोहम्मद फेक जी अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम जो है प्रातः 11 से 1 बजे के बीच में चलता है, और इसी बीच आप आपके फरमाइशों के गीतों को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1, गीत के बोल है चुनरी चुनरी। फरमाइश करता है इस गीत के मस्तानापुरा जंक्शन से हैं अंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। भिलाई से हैं बेगम अनुश्री, प्रदीप, राजश्री, प्रमिला। रायगढ़ से हैं जानवी डोनीम, पिंकी और दीपा डोनीम। लोहार से हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा रानी। रायगढ़ से हैं उमाराज, दनीश राज। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। बुद्धनगर लोनी से हैं नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाशवीर राजपूत। बालोद से हैं कमलेश जयपुरिया। खंडवा से हैं पिंकी, मिंकी, सिंकी, रिंकी। रायगढ़ से हैं लालचंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा। सहारनपुर से हैं सैयद मसूरी, शाइना हसन, अस्का, नाजिया आफिया और इब्राहिम शद्दाब अदीब। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं चुनरी चुनरी।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं, हम उनसे मोहब्बत करके। फरमाइश करता है इस गीत की सूरज सरगुंजा मेन पार्ट से हैं, प्रभा डोनीम, प्रमिला डोनीम, आशा, निशा और पूरा डोनीम परिवार। छत्तीसगढ़ से हैं रमेश कुमार शाहू, राधिका देवी, पूजा देवी और मिश्री देवी शाहू। अनुरोध करता है साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कुरुक्षेत्र से हैं दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी। महादेवपारा से हैं मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े। अनारकली बाजार जंगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मनोत्रा, गव्या मनोत्रा, सूचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत और गुरशब्द सिंह राहुल। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगी, महेश संगी, प्रज्ञेश संगी, प्रीतेश संगी, पूरा संगी परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, निशानी और निमित हुजा। सोलापुर तालुका अक्कलकोट से हैं सबीर गुलदाज, महबूब सैयद और जहांगीर, जेबून और नजमा सभी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हमने उनसे मोहब्बत करके।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं खामोशिया और फिल्म का नाम भी खामोशिया ही है। फरमाइश करता है इस गीत के धनुरी टेलीवाला से है निशार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, स्नेहा रफ़ी, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। बुल्ढाणा से हैं नारायण हागी, कमल हागी, दिव्या हागी, जय हागी। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका शर्मा, बिरचर मारा।

सेन एंड किशोर घट्टी, संगीता घट्टी, साक्षी, जयश्री मेहतरी, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीपी कुल थे। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं खामोशियाँ।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, खामोशिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं मोरनी बागा में बोली, और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत की, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और रियान खुराना। चौहान यूपी से हैं, सुरेश चुरसिया, श्रीमती सरोज चुरसिया, सुभेद सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा और शिवानी चुरसिया, पवन गोड़, योगेंद्र नायक। कानपुर से हैं श्रीमती सुजाता चुरसिया, पंकज चुरसिया, पीहू और दिया। आगरा से हैं श्रीमती सरिता चुरसिया और सुमित चुरसिया और अवीर चुरसिया। एकता कॉलोनी रोहतांग से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित बोट। इसी के साथ जुड़ रहे हैं श्रोता साथियों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास। महाराष्ट्र से शंकर गिरबिड़े और सुमन और दिलीप गिरबिड़े। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मोरनी बागा में बोले।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, मोरनी बागा में बोली। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है दिल जली। गीत के बोल हैं हो नहीं सकता और इस गीत को आवाज़ी है उदित नारायण ने। फरमाइश करता है इस गीत की, राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र दागी। अनुरोध करता है इस गीत के बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, श्रीमती करुणा शिवास, आयुष शिवास, विवेक शिवास और बेबी आयुष शिवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सुमु, मानस राज। छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवागन, दुर्गा प्रसाद देवागन, पराग टेलर, तनुजा देवागन और ईशांत देवागन। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और युधव। करेली बरेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, अलीशना अंसारी, अजलमा अंसारी। जरूर वरूर से हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनेरे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं हो नहीं सकते।

साथियों, अभी हमने उदित नारायण जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, हो नहीं सकता। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत की बोल है डफली वाली डफली बजा। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के गनगोला दाता।

गंज जिला बदायूं से हैं इशरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, आज़म खान और अरहान खान। और भी दोस्त हैं जो चुनना चाह रहे हैं। बरेली से हैं इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद अंसारी, मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश। हनुमानगढ़ से हैं भाई प्रेम सिंह, सुखवीर काजल, लखवीर और रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू मटकू। बरकाना से हैं अफजल ताज, शाहिल सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी साहिन और अफजल मलिक। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं डफली वाले डफली बजाओ।

0: साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल है आंख है भरी भरी, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। फरमाइश करता है इस गीत की बिहार एन्क्लेव दिल्ली से है मनमोहन चुंग, मीठी चुंग खट्टी चुंग शरणपुर से है ओम प्रकाश चौहान और सोनाली चौहान। अनुरोध करता है साथियों इसी गीत की। झारखंड से है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और सभी मित्रगण। टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से है ब्रजेशन विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा। उमराव से है वलीउल्लाह अंसारी, अजमाना संसारी, शबनम बानो। बक्सर से है राज एस डी अंसारी, फातमा नास। दिल्ली से है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीपा। छत्तीसगढ़ से है प्रभा रानी चमोरिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को।
1: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो समाने को जीत पाए।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। हमारी अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, फिल्म का नाम है पाकीजा। इस गीत को आवाज दी है मीना कुमारी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के झालावाड़ से है प्रतीक, सुमन और गिरीश। अजीता कसाना, माया देवी, रितिका आदित्य कसाना मुरादाबाद से हैं। और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। जराफाबाद से है सुधाकर राजी जाधव, प्रशांत राजी जाधव, सचिन, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षदा देशमुख। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। पटापरा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर से हैं श्रीमती जयवंती केवट। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी। अनुरोध करता है इस गीत के साथ जुड़ने वाले। गंजुरवारा से हैं कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, आशीम हशमी और कमल राही। जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथी श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जागृति बुन, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बोन हूँ था का। अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि पुन, आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति पुन, आपरे भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपरी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे, न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात

0: सके। शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा अपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल व्यायाम या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन को संतुलित, सफल और खुशहाल बनाने का माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारा विषय है कशिश, योग का महत्व। श्रोता साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। आधुनिक सुविधाएं भी है लेकिन मानसिक संतुलन की कमी है। सफलता की दौड़ है लेकिन स्वास्थ्य पीछे छूटता जा रहा है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में हम देखते हैं कि योग एक ऐसी जीवन शैली बनकर सामने आता है कशिश, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: यही कारण है कि हर वर्ष हम योग दिवस भी मनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे योग के महत्व को लेकर कि योग हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाए हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत आपसे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं साथियों हमारे लिए योग के महत्व को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि आज के हमारे युवा साथी तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी की तैयारियां, करियर की चिंता, सामाजिक अपेक्षाएं, डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव, ये सभी युवाओं के जीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हम देखते हैं कि कई युवा ऐसे हैं जो तनाव, थकान, अनियमित दिनचर्या, चिंता और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना आज के समय में कर रहे हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, इन सभी चुनौतियों के बीच योग एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। यह व्यक्ति को स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पढ़ाई का दबाव हो गया, प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, करियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव और बढ़ती मानसिक परेशानियां युवाओं को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में योग उनके लिए एक मजबूत सहारा बन सकता है। योग युवाओं को मानसिक शक्ति देता है, एकाग्रता बढ़ाता है, तनाव कम करता है, आत्मविश्वास विकसित करता है और जो युवा नियमित योग करते हैं वे अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: योग केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता श्रोता साथियों बल्कि सोच को भी सकारात्मक बनाता है। ये युवाओं को धैर्य सिखाता है, जैसा कि आपने बताया था, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज अनेक युवा घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इसका कारण है मोटापा, कमर दर्द और गर्दन दर्द, आंखों की समस्या बढ़ रही है और योग इन समस्याओं को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो योग शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने की एक प्राकृतिक तरीका भी है। देखते हैं कि नियमित योगाभ्यास से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है,

0: और शरीर में लचीलापन भी आता है। हम देखते हैं कि आज के हमारे युवा साथियों के सामने ढेर सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि तनाव और चिंता, नींद की कमी, आत्मविश्वास में गिरावट, चिड़चिड़ापन, मानसिक दबाव और समय प्रबंधन की समस्या। श्रोता साथियों, इन सभी चुनौतियों से निपटने का एक ही मात्र उपाय है, वो है योग, जो कि काफी प्रभावी भूमिका इसमें निभाता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि योग हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, क्योंकि योग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच पाती है साथियों, और हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि नियमित योग करने से शरीर लचीला बनता है, जैसा कि आपने कहा था, और मांसपेशियां मजबूत रहती है। आज मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कई युवा चिंता में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं और निराशा जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत जरूरी उपयोगी है।
0: जी जी,
1: प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं। श्रोताओं, वे नकारात्मक विचारों को कम करके सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। योग करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर पाता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कहना चाहेंगे कि जब मन शांत होता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छूटी लगने लगती है। योग व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हमारी युवा साथियों से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से योग जो है वो हमारे लिए काफी जरूरी है और हमारे स्वास्थ्य को लेकर तो अहम भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि योग का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों, गीत से पहले हमने मानसिक स्वास्थ्य योग के बारे में भी जाना था।
1: बिल्कुल।
0: शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान का क्या योगदान होता है ये भी जाना था। युवाओं के लिए योग क्यों महत्व है ये भी जाना। और आखिर योग क्या है ये भी बातचीत रही थी। यही जानते हैं आखिर योग हमें अनुशासन कैसे सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, योग केवल आसानों का अभ्यास नहीं है, ये अनुशासित जीवन जीने की कला भी सिखाता है। योग करने वाला व्यक्ति समय का महत्व समझता है, वो अपने खान पान, दिनचर्या और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है।
1: बिल्कुल।
0: अनुशासन किसी भी सफलता की पहली शर्त है। जो युवा योग के माध्यम से अनुशासन सीख लेते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनका सही उपयोग लाभदायक है, लेकिन अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है।
1: बिल्कुल।
0: योग डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। योग हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। श्रोताओं, ये स्क्रीन की लत को कम करने और आत्मनियंत्रण विकसित करने में हमारी मदद करता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व को जाने, जागृति जी, तो देखते हैं कि युवावस्था में बड़ी संख्या में लोग विद्यार्थी होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके लिए भी श्रोता साथियों योग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग करने से पढ़ाई में मन लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, परीक्षा का तनाव कम होता है, समय प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है, साथ ही मानसिक थकान भी कम होते हैं जागृति जी, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी युवा साथी हैं उनमें सीखने की क्षमता में सुधार होता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर बात करें तो नियमित योग करने वाले विद्यार्थी अधिक शांत, अनुशासित और आत्मविश्वासी भी दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि योग मन और शरीर के बीच संतुलन बनाकर आत्मविश्वास को मजबूत करता है, और जो आत्मविश्वासी युवा है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित भी रहते हैं।
0: जी हाँ कशिश, हर युवा अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि आत्मविश्वास से मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: योग व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का विकास करता है कशिश, और जब शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है तब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करने लगता है।
1: जी जी।
0: योग हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ युवा ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे। इसलिए योग स्वस्थ नागरिक तैयार करता है। ये लोगों में सकारात्मक सोच, सहनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए योग केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी आधार है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज अधिकांश युवा मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिसके कारण आंखों की समस्याएं, गर्दन दर्द, पेट दर्द और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याएं उनमें बढ़ रही हैं। ऐसे में योग इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ये शरीर को साथियों सक्रिय रखता है, स्क्रीन पर निर्भरता से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करता है। साथ ही योग जो है वो युवाओं को डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना भी सिखाता है। कह सकते हैं जागृति जी युवा साथियों से कि योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाएगा बल्कि जीवन में अनुशासन भी लेकर आएगा।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में नियमित समय पर उठना, अभ्यास करना, संतुलित भोजन करना और सकारात्मक सोच रखना श्रोता साथियों योग की जीवन शैली का ही हिस्सा है। जो युवा अनुशासित होते हैं वे अपने लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त कर पाते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: और योग उन्हें समय का सही उपयोग करने के साथ साथ जीवन को व्यवस्थित ढंग से कैसे जीना है ये भी सिखाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि योग केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक होंगे। आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम योग को एक दिन का उत्सव न बनाकर जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि युवा पीढ़ी योग को अपनाती है तो वो न केवल स्वयं का भविष्य उज्ज्वल बना सकती है बल्कि समाज और राष्ट्र को भी नई दिशा दे सकती है।
1: जी जी।
0: इसलिए श्रोता साथियों हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में योग को स्थान दें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। क्योंकि याद रखिए, धन खो जाए तो कुछ खोता है, समय खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए लगभग सब कुछ खो जाता है। इसलिए योग वो शक्ति है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, हमारी छिपी हुई ऊर्जा को जगाती है और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है।
1: बिल्कुल। ऐसे में हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम युवा जो हैं वो योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ मिनटों का योग जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। ऐसे में योग हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसलिए जागृति जी कहा भी जा सकता है कि योग युवाओं के लिए सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की एक मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को कशिश यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों आप हर सुबह योग करें, स्वस्थ जीवन का भोग करें, तन होगा मजबूत, मन होगा प्रकाश और योग से ही जीवन खास बनेगा। इन उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, बागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मत जाइने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
3: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों के सही सेहत के लिए माता पिता को बच्चों को कौन सी ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो सिखानी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि कशिश हम देखते हैं कि प्रत्येक माता पिता खुद के स्वास्थ्य से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: बच्चों का स्वास्थ्य ठीक न हो तो बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का जो अनुपात है वो बिगड़ने लगता है। हम देखते हाँ। हैं कि माता पिता परेशान हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारा बच्चा जो है वो स्वस्थ क्यों नहीं है। तो ऐसे में आज कार्यक्रम में हम यही जानने वाले हैं कि क्या ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो बच्चों को जरूर अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो सही रह पाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त भी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनवाकर हम उन्हें पहले मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो क्या ना आज भी उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमें उनकी आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे कि अंजलि जी, अगर सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में क्या बदलाव करने हैं, यानी कि क्या सुझाव है जो हमारे माता पिता अपना सकते हैं। जैसे कि साथियों, आपको सबसे पहले दोपहर के भोजन को ध्यान में रखना होगा।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, स्वस्थ शरीर सुखी जीवन का आधार है, ये बात हम सभी जानते हैं। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन ही एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और साथ ही कह सकते हैं कि विटामिन शामिल करने से शरीर जो है वो हमारा स्वस्थ रहता है। हम कह सकते हैं कि भोजन में दूध, पत्तेदार सामग्री, ओट्स हो गए, अनाज को हमें जरूर शामिल करना चाहिए साथियों, जिनमें से दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं अंजलि जी।
1: जी जी।
0: जो शरीर के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी माने जाते हैं। साथियों, फलों में प्रचुर मात्रा में भोजन, वनस्पति और विटामिन साथ ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में ये सहायक भी होते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि इसी के साथ अब बात आती है सोने और जागने का सही समय। यानी कि श्रोता साथियों, हमारे शरीर के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जब हम कहते हैं तो हमारी अंतर्निहित प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर का उपचार करती है। श्रोता साथियों, नींद की दवा से मन, मस्तिष्क और शरीर को आराम मिलता है और कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं कशिश के, बहुत सी बार बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, तो ऐसे में वो नींद की दवाई ले लेते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क को आराम तो मिलता है लेकिन उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो जाती है।
0: जी जी।
1: ऐसे में श्रोता साथियों, सोने और जागने का सही समय होने से शरीर स्वस्थ, फुर्तीला और चुस्त दुरुस्त रहता है। निश्चित रूप से सही समय पर सोने और जागने से बच्चों का पिरामिड सिस्टम भी मजबूत होता है।
0: जी हाँ।
1: जिससे उन्हें सोने और जागने से बहुत सारे आराम मिलते हैं। असल में बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे सोना ही चाहिए। और हम देखते हैं कि जो बच्चे सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी अच्छी होती है। वो शारीरिक गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं।
0: हाँ।
1: वो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं। इसी के साथ उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ साथियों, नियमित रूप से व्यायाम और खेलकूद भी जरूरी है। यानी कि साथियों, खेलकूद और व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ।
0: नियमित व्यायाम और खेल से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। साथ ही कह सकते हैं कि बच्चों से कभी भी मना न करें आप, बल्कि संभव हो तो आप भी उनके साथ खेल खेल सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे आप भी ज्यादा फिट रहेंगे साथियों, और साथ ही आपके बच्चे भी अच्छा महसूस करेंगे।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि क्या ऐसी स्वस्थ आदतें हैं जो हमारे बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: तो बातें तो निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमारे बच्चों को कुछ हमें स्वस्थ आदतें सिखानी चाहिए जिससे वे स्वस्थ रह पाए।
1: जी जी।
0: इससे पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से दोपहर के भोजन का हमें ध्यान रखना है, साथ ही सोने जागने का समय व्यवस्थित होना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। यही अब बात आती है कशिश फास्ट फूड से दूरी की, यानी कि श्रोता साथी, जो हमारी निर्भरता बाजार में मिलने वाले जंक फूड से हो गई है उसे हमें कम करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ और सस्ते ईंधन से एक गाड़ी की सेहत खराब हो जाती है, उसी प्रकार के फास्ट फूड रूपी ईंधन से हमारे शरीर की सेहत भी खराब हो जाती है।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं कि आज हर भारतीय के खान पान का यह हिस्सा बन चुका है और जल्दी से तैयार होने वाला जंक फूड बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है कशिश।
1: जी जी।
0: जंक फूड में मौजूद अस्वस्थ कर संतृप्त वसा कोर्स पदार्थ के कारण बच्चों में कम उम्र में ही मोटापा, कैंसर, हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो हमें देखने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए जल्द से जल्द हमें हमारे बच्चों को बताना है कि फास्ट फूड से दूरी करना उनके लिए क्यों जरूरी है और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के सामने आ सकती है उनकी उम्र के अनुसार। तो
1: जी,
0: हम उन्हें कहना चाहेंगे कि फास्ट फूड से ज्यादा हम हमारे घर पर बनी हुई चीजों का प्रयोग करें।
1: जी हाँ। इसी के साथ साथ ही मैदा, चीनी और नमक से भी दूरी बनाकर रखनी है। अंजलि जी, ये बताया गया है कि हमारी प्राचीन पद्धतियों में मैदा, चीनी और नमक को सफेद जहर के बराबर कहा गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका अधिकतर सेवन करने से श्रोताओं, हमारी कार्य क्षमता में कमी के साथ साथ शरीर पर भी बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
0: जी हाँ।
1: इनका अत्यधिक सेवन बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ाने की समस्या पैदा कर सकता है साथियों।
0: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि हर माता पिता को अपने बच्चों के खान पान में पोषण से जुड़े आहार पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए हल्का पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जल है। श्रोता साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन से शरीर की आधी बीमारी समाप्त हो जाती है।
1: जी हाँ। और हम देखते हैं कि लगभग हर माता पिता अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए डिजिटल सामग्री लेकर जाते हैं। वे बच्चों को खिलौनों से खेलने के बजाय डिजिटल सामग्री जैसे कि टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन, वीडियो गेम, इन सभी की लत लगा देते हैं। साथ ही जिससे बच्चों की आंखों की रोशनी खराब हो सकती है और बच्चे इसके शिकार भी हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आपको कहना चाहेंगे कि डिजिटल सामग्री का सीमित उपयोग करने से बच्चों के आत्मज्ञान विकास में मदद मिलेगी।
0: जी हाँ। तो कशिश, हम देखते हैं कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है साफ सफाई।
1: जी हाँ।
0: हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण में रहने से श्रोता साथियों शरीर स्वस्थ रहता है। अस्वच्छता के प्रति बच्चों को समीक्षा अवश्य हमें देनी चाहिए और बच्चों में स्वयं को स्वच्छ रखने से संबंधित जो आदतें हैं वो भी विकसित करना चाहिए, जैसे कि रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना और अपने आसपास की सफाई रखना, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें बच्चों को अवश्य सिखानी चाहिए।
1: बिल्कुल। इसी के साथ बताएं श्रोता साथियों, तो साफ सफाई के साथ साथ नियमित टीकाकरण भी जरूरी है। हम देखते हैं कि बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है। अंजलि जी।
0: जी बिल्कुल।
1: नियमित टीकाकरण बच्चों में रोग संबंधित क्षमता को पुनः प्राप्त करता है, जिससे खतरनाक वस्तुओं से बचाव में मदद मिलती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं।
0: जी हाँ। हम देखते हैं कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र होती है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छ वातावरण हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। बच्चों को घर के साथ साथ बाहर अपने आस पास कहीं भी गंदगी हमें फैलाने नहीं देना है। इसी के साथ बच्चों को बचपन से ही हमें ये सारी आदतें सिखा देनी है कि हमें किस तरीके से अपने आसपास की सफाई रखनी है और कहीं भी उन्हें गंदगी दिखती है तो उसके सफाई का वो प्रबंधन अवश्य खुद से करें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम।
0: जी बिल्कुल।

0: तो साथियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। भाई बुनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज वागड़नी खेती नी विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नो आधार है। अणा विषय माते घणा कानी अमारी आप तक बात रहेगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। भाई बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈન બોનુ ગીત તો અહીં શું પૂરું અને ગીત બાદ એક ગીત ફરી આપ સપનું ઘણે મન સ્વાગત કરો હ અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈન બોનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો પારંપરિક બીજ વાગણની ખેતીની વિરાસત આત્મનિર્ભરતા અને બહેતર ઉત્પાદનનું આધાર હે આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બલ્લે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિજી
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુ બહુ ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ પારંપરિક બીજ પ્રબંધન કો લેકર હમ દેખતે હૈ કે બીજ કા પ્રબંધન કરના વાગડ જો ક્ષેત્ર હૈ ઉસકી ખેતી કી વિરાસત હૈ આત્મનિર્ભરતા હૈ ઓર બહેતર ઉત્પાદન કા આધાર હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમ યહી બતાઈએ कि आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक बीजों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है
1: तो किसान भाइयों अगर हम हमारे पारंपरिक बीज की बात करें तो वागड़ अंचल का हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ खेती की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है
0: बिल्कुल
1: और प्रकृति आधारित जीवन शैली का जो केंद्र है उसको हम खेती और इससे जुड़ी हुई चीजें मानते हैं तो यहाँ के किसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभव परंपरागत ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खेती की ऐसी प्रणालियां विकसित की जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है
0: बिल्कुल
1: इन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे हम खेती की आत्मा कह सकते हैं वो है हमारा पारंपरिक बीज क्योंकि बीज खेती के लिए एक आदान या वस्तु नहीं है बल्कि ये हमारे किसान साथियों के लिए उनकी स्वतंत्रता उनकी खाद्य सुरक्षा उनकी संस्कृति और खेती के ज्ञान का प्रतीक है
0: बिल्कुल
1: तो किसान भाइयों हम कह सकते हैं कि जिस किसान के पास अपना बीज होता है वो खेती के लिए बाजार पर बहुत कम निर्भर रहता है
0: जी जी सर
1: इसी के उल्टे यदि हम बात करें तो किसान हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार की तरफ देखते हैं कई बार बीज के मिलने में जो देरी होती है उससे उनकी फसल प्रभावित होती है
0: बिल्कुल
1: और बीज के साथ कई सारे बाहरी संसाधनों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है
0: जी जी
1: तो आज अगर खेती की लागत बढ़ रही है इसमें उर्वरक कीटनाशक मजदूरी और सिंचाई इनके खर्च जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे समय में अपने खेत का शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज यदि वो तैयार करें तो इससे कई तरह से हमारी खेती में लागत को कम करने में सहायता मिलेगी
0: बिल्कुल सर
1: और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसान के पास खुद का अपना बीज होता है तो उसकी बाजार की निर्भरता कम हो जाती है और अगर उसके पास अपना बीज नहीं होता है तो किस तरीके से खर्च बढ़ता है और उसके सामने चुनौती आ जाती है यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ क्षेत्र के किसान किस तरीके से बीजों का प्रबंधन करते हैं
1: तो देखिए किसान भाइयों जैसे कि कहा भी जाता है जैसा बीज वैसी फसल तो खेती की सफलता का पहला आधार अच्छा बीज
0: बिल्कुल
1: यदि बीज स्वस्थ है शुद्ध है और इसी के साथ वो मजबूत है तो फसल भी अच्छी

0: होगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए किसान पूरे वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद लेकर खेती करते हैं। और हमारे वागड़ क्षेत्र की जो मुख्य खेती है वो वर्षा आधारित खेती है, यानी कि वो बारिश के पानी पर निर्भर करती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी स्थिति में यदि बीज कमजोर या खराब हुआ तो हमारा खर्च, हमारी मेहनत दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो किसान साथियों, यदि बीज प्रबंधन की बात करें, यानी कि बीज की व्यवस्था की बात करें,
1: जी जी,
0: तो वागड़ की जो पारंपरिक बीज की संस्कृति है, इसमें ज्यादातर जो फसल के लिए लगने वाला बीज होता है वो किसान पहले से अपने घरों में रखते हैं। तो वागड़ के गांव में बीज संरक्षण कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि ये एक सामुदायिक संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार या तो हमारे पास बीज कम है या किसी तरह का बीज यदि हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान एक दूसरे के साथ बीजों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं, जिसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं देना होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो गांव के दूसरे किसान उनको बीज उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार बीज सामाजिक सहयोग और सामुदायिक सुरक्षा का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल,
0: बीज के चयन का कार्य बहुत महत्व रखता है। कटाई के समय खेत की जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको किसान चिन्हित करते हैं। इसमें जो बड़े दाने वाले, जैसे हम मक्का की बात करें तो बड़े भुट्टे या अन्य दाल वर्गीय फसलों की बात करें तो उड़द, मूंग, तुअर, इनमें जो सबसे बड़े दाने होते हैं और ज्यादा फली वाला जो पौधा होता है उनका चयन किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार के पौधों से प्राप्त दाने जो हम बीज के लिए रखते हैं और अगली बुवाई में उनका उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बीज चयन में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम भूमिका की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: जी जी,
0: वे बीजों की कटाई छटाई करने से लेकर सफाई, सुखाने, संरक्षण और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण काम को पूरे साल संभालती हैं। परिवारों में बीज संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के पास होती है,
1: जी जी,
0: ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बीज का ज्ञान के जीवंत भंडार के रूप में माना जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारे वागड़ क्षेत्र के किसान भाई बहन जो हैं वो पारंपरिक बीज का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है, तो सर अब यही मैं जानना चाहूंगी कि बीज के चयन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो किसान साथियों, अगर हम बीज के चयन की बात करें तो खेत से ही शुरू होता है हमारे बीजों का उत्पादन। अक्सर किसान ये मानते हैं कि बीज उत्पादन फसल कटाई के समय शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया बीज की बुआई से ही शुरू हो जाती है। यदि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना है तो पूरे मौसम के दौरान उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
1: जी हाँ।
0: तो फसल के बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट, या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना। पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है। तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है, जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं। इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई, जिस पौधे से भी बीज रखते हैं, वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
1: जी जी।
0: जिस पे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
1: बिल्कुल।
0: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं, तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण, और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें, तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है, या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
0: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें, तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं।
1: जी।
0: तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने, या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है, तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबाकर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है, और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
1: बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहन बुनो सिमके अवडे आपणे वैसे मनीष जी जुड़ियो तक हता ने एणे आपणे घणी असल तरीका थी की बताड्यो है कि आपणे जे वागड़ क्षेत्रना किसान भाई बहन है ई पारंपरिक बीजोनुं प्रबंधन हरते करी कई कई वातोनुं एणाने ध्यान राखवुं है, एने साथे आपणी जे बूने है एणानी बीज चयन में हूँ भूमिका है ने बीजनी सफाई नी ग्रेडिंग नुं हूँ महत्व है। आशा करूँ कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है आपणे अणस कार्यक्रम थकी सूटा पड़वानुं। सूटा तो पड़ा पर साथे पहले हम रिलाय कर कितने मोरे पड़ा सूटा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: आज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि हमारा युग तकनीक का युग है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारा जीवन किसी न किसी तकनीक से जुड़ा होता है। हम मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया ने जीवन को पहले की तुलना में और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे आपको कि तकनीक ने दूरी को कम किया है, समय की बचत की है और ज्ञान के नए द्वार खोले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी बार बार सामने आती है अंजलि, कि कहीं तकनीक इंसान से उसकी संवेदनाएं, भावनाएं और जीवन की वास्तविक अनुभूति तो नहीं छीन रहा। कई लोग मानते हैं कि मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य अकेला होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: परंतु सच्चाई ये है श्रोता साथियों कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकती, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद मशीनों में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय, उसके अनुभव और उसकी भावनाओं में बसता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हम इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों से बातचीत भी करी थी और हमने विषय भी बताया था।
1: बिल्कुल,
0: विषय हमने बताया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
1: जी हाँ जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह हमारे भावनाओं, संवेदनाओं, सपनों, संघर्षों और रिश्तों का एक संसार है। जीवन का वास्तविक आनंद केवल सुविधाओं से नहीं आता है श्रोता साथियों, बल्कि अनुभव से आता है। किसी प्रियजन का स्नेह, बच्चों की मुस्कान, खेतों में लहराती फसल, बारिश की पहली बूंद, मित्रों का साथ और परिवार का अपनापन।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, ये सब ऐसी अनुभूतियां हैं जिन्हें कोई मशीन नहीं बना सकती। तकनीक हमारे काम आसान तो कर सकती है, लेकिन हमारे दिल में उठने वाली भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। वह साधन हो सकती है, जीवन नहीं।
0: जी हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं अंजलि कि जीने की अनुभूति केवल सांस लेने का नाम नहीं है, ये प्रेम, करुणा, संघर्ष, सफलता, असफलता, आशा और सपनों का संगम है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, मित्रों के साथ हंसता है, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करता है या किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तब वो जीवन को वास्तव में जीता है।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक इन अनुभवों को आसान बना सकती है, लेकिन उन्हें पैदा नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि मनुष्य की भावनाएं किसी मशीन द्वारा निर्मित नहीं होती, वे उसके भीतर से निकलती है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कि आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पढ़ाई, खेती, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। पहले किसी समाचार को गांव तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: आज कुछ सेकंड में पूरी दुनिया तक जानकारी पहुंच जाती है। पहले डॉक्टर तक पहुंचना कठिन होता था, आज ऑनलाइन परामर्श संभव है। किसानों को मौसम की जानकारी मोबाइल पर मिल जाती है। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तकनीक को नकारा नहीं जा सकता, यह मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन है जागृति जी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम तकनीक को साधन के बजाय जीवन का केंद्र बना लेते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि तकनीक ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है, लेकिन उसने हमारे सपनों को नहीं बदला।
1: बिल्कुल,
0: आज भी हर युवा अपने जीवन में सफलता, सम्मान और खुशियों की तलाश करता है। वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता है और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहता है। ये इच्छाएं श्रोता साथियों हजारों वर्षों से मानव जीवन का हिस्सा बनी रही है, आगे भी रहेंगी। तकनीक केवल साधन है, लक्ष्य नहीं, इसीलिए ये कहना गलत होगा अंजलि कि तकनीक जीवन की अनुभूति को समाप्त कर सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास हर आधुनिक सुविधा है, उसके पास महंगा मोबाइल है, तेज इंटरनेट है, आरामदायक घर है, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रेम, अपनापन और संतोष नहीं है, तो क्या वह वास्तव में खुश रहेगा? तो श्रोता साथियों, जीवन का अर्थ केवल सुविधा प्राप्त करना नहीं है, जीवन का अर्थ महसूस करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, जब कोई किसान मेहनत के बाद अपनी फसल देखता है, जब कोई विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, तब जो खुशी मिलती है वह किसी मशीन द्वारा नहीं दी जा सकती। तकनीक सुविधा दे सकती है, लेकिन भावनाएं नहीं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद सरल चीजों में छिपा हुआ है। बारिश की पहली बूंद, पक्षियों का मधुर स्वर, खेतों में लहलाती फसल, बच्चों की मुस्कान और माता पिता का स्नेह, ये सब अनुभूतियां हैं जिन्हें कोई तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, मनुष्य का हृदय इन अनुभवों से जुड़ा रहेगा। और यही कारण है कि आज भी लोग व्यस्त जीवन से समय निकाल कर प्रकृति के बीच जाना पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि कोई भी तकनीक हमारे जीवन की अनुभूति हमसे नहीं छीन सकती। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, हमने गीत से पहले बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और तस्वीरें साझा कर सकते हैं। यह सब उपयोगी है जागृति जी, लेकिन सोचिए श्रोता साथियों कि किसी प्रिय व्यक्ति का हाथ पकड़कर बात करना और मोबाइल स्क्रीन पर बात करना, दोनों में कितना अंतर है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों की असली ताकत उसकी उपस्थिति में होती है। एक माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन, मित्र का साथ और परिवार का सहयोग, इनकी जगह कोई तकनीक नहीं ले सकती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे संवाद, सहयोग और अपनापन चाहिए होता है, और यह आवश्यकता जागृति जी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब मनुष्य अपनी सोच, संवेदना और निर्णयों पर स्वयं निर्णय रखता है, तभी वो वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, यदि हम तकनीक का उपयोग अपने विवेक से करते हैं और उसे अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देते, तो हम सच्चे अर्थों में स्वराज की भावनाओं को जीवित रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसका स्वामी बनना ही आधुनिक युग का सच्चा स्वराज है। अंजलि, इतिहास गवाह है कि हर नई तकनीक के आगमन पर लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की है। जब छापाखाना आया, तब भी लोगों को डर था कि पारंपरिक ज्ञान समाप्त हो जाएगा। जब रेडियो और टेलीविजन आए, तब भी अनेक चिंताएं व्यक्त की गई, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि मनुष्य ने हर तकनीक को अपने अनुसार ढाल लिया। आज भी वही होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नए डिजिटल तकनीकों के बावजूद मानवीय संवेदनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि वे मनुष्य के आत्मा से जुड़ी हुई है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि तकनीक हमें मौसम की जानकारी दे सकती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बारिश की बूंदों का स्पर्श महसूस नहीं करा सकती। मोबाइल पर जंगल की तस्वीरें दिखाई जा सकती है, लेकिन पेड़ों की ठंडी छाया का अनुभव नहीं किया जा सकता। किसी वीडियो में नदी दिखाई जा सकती है श्रोता साथियों, लेकिन बहते पानी की आवाज और उनके किनारे बैठने की शांति का अनुभव नहीं कराया जा सकता। प्रकृति के साथ हमारा संबंध केवल देखने का नहीं है जागृति जी, बल्कि महसूस करने का है, और यही अनुभूति जीवन को सुंदर बनाती है। तकनीक कई कामों को आसान बना सकती है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा

0: आनंद अक्सर संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता में छिपा होता है।
1: जी हाँ।
0: जब कोई विद्यार्थी श्रोता साथियों कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा में सफल होता है, जब कोई महिला अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाती है, जब कोई किसान जागृति जी विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी फसल उगाता है, तब जो संतोष मिलता है वह केवल परिणाम से नहीं बल्कि पूरी यात्रा का मिलता है।
1: जी हाँ।
0: मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन संघर्ष की कहानी नहीं जीत सकती।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रचनात्मकता है। एक कवि की कविता, एक कलाकार की कल्पना, एक किसान का परिश्रम, एक शिक्षक का समर्पण और एक माँ का प्रेम किसी मशीन द्वारा पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
0: जी जी।
1: तकनीक इन कार्यों में सहायता कर सकती है, परंतु इनके पीछे छिपी भावनाओं का स्रोत मनुष्य ही रहेगा। यही कारण है कि जीवन की अनुभूति सदैव जीवित रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें। हमें बच्चों को केवल डिजिटल कौशल ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखानी होगी।
0: बिल्कुल।
1: हमें ये याद रखना होगा कि जीवन की गुणवत्ता केवल आधुनिक उपकरणों से नहीं बल्कि अच्छे संबंधों, अच्छे विचारों और सकारात्मक कर्मों से निर्धारित होती है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी तकनीक हमसे जीने की अनुभूति नहीं छीन सकता।
0: जी जी।
1: तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए अंजलि, वो मनुष्य के हृदय में बसे प्रेम, करुणा, आशा और संवेदनाओं का स्थान नहीं ले सकती। जीवन की सच्ची अनुभूति हमारे अनुभव, रिश्तों, संघर्षों और सपनों में बसती है श्रोताओं। इसीलिए हमें तकनीक से डरने की नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम तकनीक को साधन और मानवीय मूल्यों को आधार बनाए रखेंगे तब जीवन की खुशियां और भी अधिक गहरी हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: तकनीक जीवन को आसान बना सकती है लेकिन जीवन का अर्थ केवल इंसान ही महसूस कर सकता है। यही सच्चा स्वराज है, यही मानवता की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मनुष्य हंसता है, रोता है, सपने देखता है और उम्मीद करता है और दूसरों के सुख दुख में शामिल भी होता है। तकनीक गणना कर सकती है लेकिन करुणा नहीं दिखा सकती। वो उत्तर दे सकती है लेकिन किसी के दर्द को मनुष्य की तरह महसूस नहीं कर सकती। जीवन की असली शक्ति हमारी भावनाओं में है और यही हमें इंसान बनाती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों और युवाओं को यह समझाएं कि तकनीक महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन उससे कहीं बड़ा है। उन्हें किताबों के साथ अनुभव भी चाहिए, मोबाइल के साथ मित्र भी चाहिए, इंटरनेट के साथ इंसानियत भी चाहिए और जानकारी के साथ संवेदनशीलता भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब ये सभी चीजें साथ चलेंगी तभी जीवन संतुलित और सुखी बन पाएगा।
1: जी हाँ। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: भाई बोनो गीत तो ऐसो पूरो ननस गीत हावती अभी कार्यक्रम घूमर तक ही पड़ा सूटा आशा कर हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक की जे भी बातें रही हैं आपने कमी होगा
1: होवे
0: तो आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केव लाग्यू इने बारा में आप मने राय सुझाव आली शको अमारे अणपता माते
1: होवे बोनो अमारो पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिनकोड नंबर है 327001 अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माती अमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तो भाईन बोनो फेरे मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक ना विषय ने हाथे तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। श्रोता साथियों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर मुस्कान खुशी नहीं होती, हर तस्वीर पूरी

कहानी नहीं होती, जो दुनिया मोबाइल में दिखाई देती है वह हमेशा जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आज लगभग हर उम्र के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बच्चों से लेकर युवाओं तक और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और असली जीवन में फर्क समझना क्यों जरूरी है। जी हाँ साथियों, आज मोबाइल हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारी पहुंच में है और दुनिया हमारी स्क्रीन पर है। और जैसा कि हम दुनिया को देख रहे हैं तो हम सभी सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले भी उसी पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया ने साथियों हमें दुनिया से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। असली जीवन और दिखाए जाने वाले जीवन के बीच अंतर को समझना, तो आज कार्यक्रम में हमारी इस विषय पर आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और असली जीवन में फर्क समझना क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, यही सबसे पहली बात आती है कि सोशल मीडिया की दुनिया आखिरकार है क्या। हम सभी के मन में ये सवाल आता है, तो आपको बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां लोग अपने विचार, तस्वीरें, वीडियो और अनुभव साझा करते हैं। यह एक उपयोगी माध्यम है जानकारी पाने के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए और अपने हुनर को दिखाने के लिए और सीखने सिखाने के लिए। लेकिन साथियों, समस्या तब शुरू होती है जब हम सोशल मीडिया को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा ही दिखाते हैं, पूरा जीवन नहीं दिखाते। किसी ने कहा है कि सोशल मीडिया जिंदगी की झलक दिखाता है, पूरी जिंदगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो हमें दिखाई देता है किसी की सफलता, किसी की यात्रा, किसी की नई खरीदी, किसी की मुस्कुराती तस्वीरें। लेकिन हमें यह नहीं दिखाई देता कि उसके पीछे क्या मेहनत हुई है, उसकी असफलताएं कितनी रही होंगी, उसकी कितनी चिंताएं हैं, उसके संघर्ष। यही कारण है कि कई बार लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। आज बहुत से लोग अपनी तुलना उन तस्वीरों और वीडियो से करने लगे हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है, मैं उतना सफल क्यों नहीं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे तुलना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है और अभी के समय में ये जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहना चाहूंगी मैं कार्यक्रम के माध्यम से कि जब हम अपनी असली जिंदगी की तुलना किसी की चुनी हुई तस्वीरों से करते हैं, तो हम खुद के साथ न्याय नहीं करते। श्रोता साथियों, असली जीवन में संघर्ष होते हैं, असफलताएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और भावनाएं होती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अक्सर केवल उपलब्धियां दिखाई देती हैं। असली जीवन में इंसान सीखता है, गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया पर कई बार केवल मंजिल दिखाई देती है, सफर नहीं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन की तुलना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों की उपलब्धियां, सफलता और उन सारी चीजों को दिखाकर ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कितना पीछे हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ऐसा मत सोचिए। या आप ये सोचते हैं कि मुझे तो सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां होती है, मैं कैसे मेहनत करता हूँ, इन लोगों के पास कहाँ से समय आता है, ये इतनी रील्स कैसे बना लेते हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है। क्योंकि हर किसी का जीवन अलग होता है और जो सोशल मीडिया पर चीजें बताई जाती हैं, उनकी अच्छी जिंदगी बताई जाती है, उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। उनके पीछे संघर्ष होता है, असफलताएं होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती है और भावनाएं भी होती हैं, लेकिन वो सब चीजें हम नहीं देख पाते। इसलिए दोस्तों, जब भी हम सोशल मीडिया को लेकर कुछ अलग चीजें सोचने लगे, यानी कि नकारात्मक सोचने लगे, तो हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पोज देने की जरूरत है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हमें अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी है। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें मेरी आपसे चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे कुछ अनकही बातें होती हैं। जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता, जिंदगी कैमरे से बड़ी होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनको लेकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, ढेर सारी बातें। और सोशल मीडिया पर जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में और ज्यादा आने लगती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अच्छा जीवन ही दिखाया जाता है, उसके पीछे का संघर्ष, असफलताएं, जिम्मेदारी और भावनाएं नहीं दिखाई जाती। इसलिए श्रोता साथियों, युवा वर्ग को सोशल मीडिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ हम महसूस करते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भी उन पर ही पड़ रहा है। इसके सकारात्मक पहलू की बात करें तो युवा साथियों को इससे सीखने के अवसर मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। कई युवा साथी इन सारी चीजों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं और उनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है। और बहुत ज्यादा इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से हम देखते हैं कि समय की बर्बादी होती है, तुलना की आदत बनती जाती है और मानसिक तनाव जन्म लेता है। श्रोता साथियों, जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की उपलब्धियां देखता है तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, हम हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति की उपलब्धियां, उनकी रुचि, उनके जीवन के लक्ष्य, उनके जीवन का संघर्ष, उनके जीवन की जिम्मेदारी, सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन की तुलना किसी और व्यक्ति के जीवन से नहीं करनी है। हमारे जीवन में हमारे पास जो है उससे हमें संतुष्ट भी रहना है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ श्रोता साथियों कि आप जीवन में प्रयास ही ना करें, आप प्रयास करते रहिए, आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे। लेकिन उस बदलाव के लिए आप अपने जीवन में मानसिक तनाव को न घेरें, कि मानसिक तनाव एक ऐसा तनाव है जो हमारे जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए प्रयास करते रहिए, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ, बच्चों और किशोर जो है वो अभी अपनी पहचान बना रहे होते हैं। इसी के साथ अब अगर बात करें कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों और किशोरों पर कैसे पड़ रहा है तो हम देखते हैं कि यह जो समय होता है वो बच्चों की पहचान बनाने का होता है। यदि वे सोशल मीडिया को ही वास्तविकता मान ले तो उनके मन में कई गलत धारणाएं बन सकती हैं। वे सोच सकते हैं कि सुंदर दिखना ही सफलता है, लोकप्रिय होना ही खुशी है और ज्यादा लाइक्स मिलना ही मूल्य है। श्रोता साथियों, लेकिन असली जीवन इन चीजों से कहीं बड़ा है। असली जीवन में परिवार का साथ होता है, दोस्तों की सच्ची दोस्ती होती है, मेहनत का आनंद होता है और छोटे छोटे पलों की खुशी होती है। ये सब चीजें लाइक्स और फॉलोवर्स से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा समय जीवन में खुद के लिए निकालिए, और अगर आप इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं और तनाव ले रहे हैं तो आप खुद के लिए समय निकालकर शांत मन से सोचिएगा कि असली खुशी किस चीज में है, सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी में या असल जीवन में परिवार का साथ, सच्ची दोस्ती, मेहनत और कुछ छोटे छोटे पलों की खुशियों में है। क्योंकि दोस्तों, असली खुशी स्क्रीन में नहीं होती, रिश्तों और अनुभव से मिलती है। सोशल मीडिया से दूर भागना समाधान नहीं होगा, जरूरत है उसका

संतुलित उपयोग करने की। सीखने के लिए उपयोग करें, जानकारी के लिए उपयोग करें, प्रेरणा के लिए उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान उससे मत जोड़िए, अपनी खुशी उससे मत सौंपिए, अपनी तुलना उससे मत कीजिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रोज दूसरों की जिंदगी देखने में घंटों बिताता है श्रोता साथियों, तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना भूल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया को साधन की तरह इस्तेमाल करता है, वह उससे लाभ भी लेता है और संतुलन भी बनाए रखता है। आज सूरज श्रोता साथियों इस बात की है कि हम बच्चों, युवाओं और परिवारों को ये समझाएं कि सोशल मीडिया जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसके गुलाम न बने। ऑनलाइन दुनिया से जुड़ें लेकिन ऑफलाइन रिश्तों को न भूलें। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया आधुनिक समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भले ही है, इससे दुनिया को जोड़ने, सीखने, अवसर तक पहुंचाने का रास्ता जरूर दिया है, लेकिन इसके साथ यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है। असली जीवन में मेहनत है, संघर्ष है, धैर्य है, रिश्ते हैं और अनुभव है, और यही चीजें इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपने आत्मविश्वास को उससे निर्धारित न होने दें। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर स्क्रीन पर नहीं, हमारे आसपास मौजूद होती है। मोबाइल की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है साथियों, जहां अपनों की आवाज है और रिश्तों की गर्माहट है। सोशल मीडिया को साधन बनाइए, जीवन नहीं, क्योंकि असली जिंदगी हमेशा स्क्रीन के उस पार आपका इंतजार कर रही होती है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अब समय हो चला है हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।